ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत के आराधना का।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

लंका में पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फार, दुश्मन के

भागे सभी जान छोड़कर, रावण को बताने लगे वो हाथ जोड़कर। एक कपी ने रख दिए बगिया के सारे पेड़ तोड़कर।

आंखें मिलाए बजरंगी से, शर्मा किसकी है मजाल, दुश्मन को चप

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत की आराधना का।

91.2 MHz पर ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा। श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। गूंज अपने पन की।

क्या नोनेश मिला तो मेगा हर्ट्स पर ए है तुम्हारा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओं, मैं या तुम्हारा भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओं कर देना अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीत कन्ने, तुम्हारा सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

जिन धर्मशाला गणेशोदा तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका गन्ने तो हाँ सारे इन्हीं बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

श्रोताओ, इस वक्त तुम्हारा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ, ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा अगला गीत। तुम्हारा सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

2 मेगाहर्ट्ज पर एएफएम सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़दे न कार्यक्रम च आगे कने सुनने न कार्यक्रम दा अगला गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो पोषण।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे दस से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, हजार दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। You can keep this book, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर, इसे खत्म करने के लिए।
12: Sure,
13: sure.
14: Hello baby chai.
15: Thank you.
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: Oh no.
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
14: पता,
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है,
14: पता
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो कैसे हैं धर्मशाला वासियों आप सभी लोग? और हम केवल धर्मशाला से बात नहीं करने वाले हैं, आपको तो पता ही है कि हमें सुना जाता है देश विदेश में भी, हमारे ऐप के जरिए भी। तो शुरू हो गया है कार्यक्रम 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जिन श्रोताओं ने अपने रेडियो सेट्स ऑन नहीं किए हैं वो भी जल्दी जल्दी से कर लें। और मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर के, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, सबसे पहले तो उन सभी हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जो किसी ना किसी खास वजह से आज का अपना ये दिन मना रहे हैं, 20 मई 2026। आज है बुधवार।

0: तो श्रोताओं ले लेते हैं सबसे पहले आज का विचार। वैसे मौसम बताया करते हैं हम आपको, लेकिन बताएंगे धीरे धीरे, अपना पिटारा खोलेंगे। हमारे पिटारे में सबसे पहले है आज का विचार, जो अपने कार्य के प्रति होते हैं ईमानदार वही पहुंचते हैं कामयाबी के शिखर पर। तो क्या इसको इलैबोरेट करना जरूरी है या आप समझ गए इन दो लाइनों में कि हम क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए गीत, इस प्यारे से गीत से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।
1: हर कलाकार का सफर तन्हा शुरू हो जानी बे मन।

लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म का ये गीत सुना अभी आपने 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला को एंजॉय कर रहे हैं आप सभी लोग अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपको मौसम की जानकारी देने का। तो धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान इस समय बना हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। हवा में नमी है 40%। और हिमाचल प्रदेश में जहां एक ओर राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर मैदानी और मध्य पहाड़ी इलाकों में सूरज के तीखे तेवरों के कारण पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में हीट वेव तथा शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा में अलर्ट रहेगा। और मंगलवार को राज्य के कुछ ऊंचाई वाले और मध्य पहाड़ी हिस्सों में प्री मॉनसून की बौछारें गिरी हैं। और हमें अचरज ये है कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। कुल्लू जिले के भुंतर में सबसे अधिक 19 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि मनाली में बूंदाबांदी हुई है। और इसके विपरीत मैदानी और निचले इलाकों में ऐसा पहाड़ी वाले इलाकों में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और जिलों में ये जो हमने अभी आपको बताया था, शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा जिलों में गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चलने और आसमानी बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ की बात अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूँ तो सुबह के समय तो आसमान बिल्कुल साफ है, अच्छी धूप खिली हुई है। अभी का तापमान आपको बता ही दिया है मैंने कि 22 डिग्री सेल्सियस है, जो दोपहर तक बढ़कर के 23 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और बारिश की संभावना यहाँ पर केवल 5% है, यानी दिन भर मौसम शुष्क और साफ रहेगा। और श्रोताओं, एक जानकारी भी आपको मैं दे दूँ इसी के साथ, गर्मियाँ जैसे ही बढ़ी हैं, एक दो दिनों से काफ़ी गर्मी हो गई है, और गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ ही हमारे बिल्कुल पास लगते विधानसभा से सिर्फ 100 मीटर दूर तपोवन, चिन्मय तपोवन के पास जंगलों में लग गई है आग। जी हाँ, और ये बड़ी ही विडंबना है, आग इतनी भयंकर थी कल रात की वो कि जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। आग इस तरह से लगनी चाहिए नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अपने आप भी आग लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रोताओं देखिए, अपनी लापरवाही होती है हमारी, 90% तो अपनी ही होती है। आपको पता है इस तरह से आग लग जाए तो बायोडाइवर्सिटी को कितना खतरा हो जाता है। बेचारे हमारे जो पशु हैं वो गांवों की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, और जब जंगली जानवर आपके घरों में घुस जाते हैं ना, फिर आप पछताते हैं, फिर आप रोते हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारे घरों में क्यों आ गए। तो भाई उनके घरों पे तो पहले ही आपने कब्जा कर लिया है, क्योंकि ये उन्हीं के रहने की जगह थी जिसे जंगल काट काट करके आपने अपने घर बना लिए हैं। और फिर भी अगर वो फिर भी थोड़ा बहुत और जंगल ढूंढ करके वहाँ पर रहने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उन्हें रहने नहीं देते हैं चैन से, वहाँ पर किसी ना किसी बहाने से आग लगा ही देते हैं। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम तो नहीं लगाते हैं, लेकिन जो लगाते हैं उनके लिए ये बात यहाँ से कही जा रही है, और वो समझते भी हैं, उन्हें पता भी है कि किस किस गलतियों की वजह से इस तरह से जंगल में आग भड़कती है।

0: जी श्वेता, बिल्कुल ना जाना कहीं ना जाना, बस यही रहना। आप लोगों से कह रही हूँ मैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है समाचारों का। जी हाँ, प्रादेशिक समाचार अब रिले किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी की शिमला केंद्र से। बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे कि हमारे आसपास की और ख़ास जानकारियाँ क्या क्या हैं। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 6 से 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेंगी हल्की हल्की हवाएं, और आज यूवी इंडेक्स 11 यानी एक्सट्रीम पर है, इसीलिए दोपहर के समय सीधी धूप में निकलने से आप बचें। और अगर अगले कुछ दिनों का प्लान बना रहे हैं कहीं कल जाने के लिए, तो 21 मई और शुक्रवार 22 मई को हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने के आसार हैं, लेकिन केवल हल्की हल्की। तो चलिए अब चलते हैं हम समाचारों की ओर।
1: पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल का युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने युवाओं से खेलों को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल जम्मू में इंडिया ओपन राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 युवा निशानबाजों को सम्मानित करने के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि कम आयु में इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प का परिचायक है। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि हमारे युवा खिलाड़ी देश का भविष्य है और उनकी उपलब्धियां उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमें खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने जा रहे चुनाव में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इनमें 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 ग्राम पंचायत प्रधान, 286 उप प्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य शामिल है। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुई है। आयोग ने कहा कि निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब इन पदों पर मतदान नहीं होगा और इससे चुनावी खर्च और प्रक्रिया का बोझ कम होगा। आयोग ने कहा कि शेष पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान होगा। पंचायतों के चुनाव परिणाम मतदान के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि पंचायत समितियों, जिला परिषदों और 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उधर कांगड़ा जिला में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की करीब 850 पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव में 12 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिले में 330 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
2: पूरा जो मतदान की पूरी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और स्मूथ हो, इस दिशा में हमारे सभी SDMs, BDOs और तहसीलदार ये लोग इसमें लगे हैं। हमने सेक्टर ऑफिसर्स एंड सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भी इसके अंदर डिप्लॉय किए हैं, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी पोलिंग हो वो स्मूथ तरीके से हो। उसके बाद जो काउंटिंग है वहाँ पर हम एंटायर प्रोसेस को वीडियोग्राफ करें या वेबकास्टिंग के माध्यम से कवर करें।
1: प्रदेश सरकार में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव में राज्य की जनता ने प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया है और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। पठानिया ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश भर में 47 नगर निकायों में से 29 में जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को केवल 16 निकायों में ही जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय 21 और 22 मई को शाहपुर परिसर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। ये संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल ने कहा कि इस संगोष्ठी में देश विदेश के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगोष्ठी से प्राप्त शोध निष्कर्षों और सुझावों को उचित मंचों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि नीति निर्माताओं को पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों में बेहतर और सुरक्षित निर्णय लेने में मदद मिल सके।
2: हमारा जो एनवायरनमेंट विभाग है मध्य प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का किया है। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शाहपुर में 21 और 22 मई को, क्योंकि हमारा 21 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसा करके है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, तो हम इसके संदर्भ में ये इकट्ठी दो दिन की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य रूप से जो थीम रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेटिक एडॉप्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नशा निवारण के पूर्व संयोजक व सलाहकार ओपी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में नशा रोकने में विफल रही है। ओपी शर्मा ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य में नशा खत्म करने में गंभीर नहीं है और प्रदेश में डार्क वेब जैसे खतरनाक टूल के माध्यम से नशे की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे नशे को खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज का सहयोग और जागरूकता जरूरी है। ओपी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने नियमों को दरकिनार कर नशा निवारण बोर्ड का गठन किया है और इसमें राजनीतिक व्यक्ति को संयोजक बनाया गया है।
3: नशा निवारण बोर्ड का आज तक एक बैठक नहीं हुई, क्या कारण है? इस प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ कि नशा निवारण बोर्ड की आज तक बैठक कन्वीनर कम एडवाइजर ने, सलाहकार महोदय ने, या जो सदस्य सचिव हैं एक्साइज एंड टैक्सेस के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस नशा निवारण बोर्ड की बैठक को क्यों नहीं किया? मैंने यह विषय माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष भी उठाया है।
1: केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान कुल्लू जिला में भी शुरू हो गया है। ये टीका किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV का टीका लगाया जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
4: महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। कुल्लू जिला में भी ये अभियान शुरू हो चुका है तथा जिला में इसके तहत 39,089 किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक इस अभियान के तहत 1,630 किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 15 वर्ष तक की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, परंतु बीते दिनों सोशल मीडिया में इस वैक्सीन संबंधी कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई गई, जिस पर चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा भविष्य में ये किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाएगी। उन्होंने 14 वर्ष पूर्ण कर रही किशोरियों के परिजनों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का HPV टीकाकरण जरूर करवाएं तथा ये पूर्णतः निःशुल्क है। इस बारे में ज्यादा जानकारी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ली जा सकती है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: प्रदेश में मई की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा और मैदानों से लेकर पहाड़ों तक लोगों को जबरदस्त गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने आज भी प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। शिमला और मनाली जैसे ठंडे शहरों में भी लोगों को दिन भर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल भी दो जिलों कांगड़ा और सोलन में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 21 मई को कुछ जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में आंधी व बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अधड़ बारिश व बिजली चमकने की संभावना है। 23 व 24 मई को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रह सकता है, जबकि मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। 25 मई को एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में 176 प्रधान 286 उप प्रधान समेत 10,854 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से

अपनाने का आह्वान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्विरोध चुने गए 10,854 पदाधिकारी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर, उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी धूप में बाह रहे हैं पसीना। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी कल। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

और श्रोताओं, अब आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है कारमा फिल्म का ये गीत। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:30 हो चुके हैं।

तो दोस्तों कारवा फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। जल्द मिलूंगी आपसे, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से गूंज अपने पन की।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex Plus Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: तो छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। वैसे स्वागत क्या करना है, आप तो जुड़े ही हुए हैं हमारे साथ। उन सभी श्रोताओं का स्वागत जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है। जी हाँ, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है ये आप सभी जानते हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

अब हम बात कर लेते हैं आज 20 मई के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ आज हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। तो आपको पता है केमिस्टों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो गई है शुरू। जी, ऑनलाइन फार्मेसी और भारी डिस्काउंट के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD के आह्वान पर आज भारत में कई जगहों पर मेडिकल स्टोर्स की एक दिवसीय हड़ताल है। मनाए जाने वाले मुख्य दिवस उनके बारे में अगर आपको बताएं तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस है। पर्यावरण और खेती में मधुमक्खियों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी आज ही है। विश्व माप विज्ञान दिवस, विज्ञान और मापन की प्रणालियों को समर्पित ये दिन भी आज ही के दिन आयोजित होता है।

1498 में पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा इसी दिन केरल के कोझिकोड कालीकट यानी तट पर पहुंचे थे और इसके साथ ही यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान और मशहूर कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1970।

और अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण घड़ी की जब 1932 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध लाल बाल पाल की तिकड़ी के महान क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल का निधन 20 मई 1932 को हुआ था।

गीत है ना, ये बाद में भी कई फिल्मों में लिया गया है, जैसे कि द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाज़ों में। इसके बाद भी कई सारी फिल्में आई और इस गीत को लिया गया उन सभी फिल्मों में, तो अपने तरीके से।

हमने आपको बताया कि शहीद फिल्म का ये गीत था मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाजों में। मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और इस गर्मी भरे मौसम में अगर हम इस तरह के गीत सुनते हैं जो कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चला हुआ है तो हमारे दिल को कितना सुकून मिलता है ना। हमारे यहाँ की वादियाँ देखने लायक हैं, लेकिन अगर इन वादियों को आग के हवाले कर दिया जाता है तो फिर कैसा लगता है, फिर कैसा सुकून मिलता है आप लोगों को। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जो कि कोशिश भी करते हैं कि अगर आग लग गई है तो उसे बुझाया जाए किसी भी तरह से, या तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन कई लोग इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि बस देख करके तमाशा देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, अपने लेवल पे कुछ भी नहीं करते हैं और बाद में उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं कि देखो हाय हाय कितना बुरा हुआ। कीजिए, आपको वो करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका दिल गवाही देगा कि वाकई में आप इस मैटर में आपने कुछ तब किया या सिर्फ उसको वीडियो ही बनाया और सिर्फ देखा ही और कुछ भी नहीं किया। तो आप थोड़ा सा जागरूक रहिए, कुछ नंबर्स अपने पास रखिए, जैसे कि वाटर सप्लाई का नंबर या फिर फायर ब्रिगेड का नंबर। कम से कम जब आपदा राहत वालों का नंबर तो आपके पास होना ही चाहिए। कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप फटाफट वहाँ पर फ़ोन करके उनको बता सकें, और कई सारी एनजीओज़ के नंबर्स भी आपके पास होने चाहिए।

श्रोताओं, ये दुखद बात जो हो गई है अब तो हो चुकी है। अब इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो वही करेंगे जिन्होंने आगे स्टेप उठाने हैं। खैर, ये चीज़ दोबारा ना हो इसके बारे में हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। अब हम मनाते हैं अपना विश्व मधुमक्खी दिवस। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करने में मधुमक्खियों और अन्य परागकणकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना आज के दिन का मकसद है।

इसी से संबंधित एक गीत सुनवाना चाह रहे हैं हम आपको। हालांकि मधुमक्खियों पर तो ज्यादा गीत बने नहीं हैं हमारे बॉलीवुड में भी, परंतु हाँ भंवरों पर जरूर बने हैं।

जी श्रोताओं, गुनगुना रहे हैं, भंवरे खिल रही है कली कली। आराधना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सभी ने सुना। तो आज है हमारी प्यारी मधुमक्खियों का दिन, जो पर्यावरण को मीठा और जिंदा रखती हैं, और उन्हीं के नाम था ये आज का हमारा गीत जो अभी अभी आपने सुना। उन भंवरों और मधुमक्खियों के नाम जो बागों में गुनगुनाते हैं और हमारे दिलों में रोमांस जगाते हैं।

तो 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और जब हम 20 मई की बात कर ही रहे थे तो आपको बता दूं कि 20 मई को यानी आज राष्ट्रीय बचाव कुत्ता दिवस भी है। आश्रय स्थलों से गोद लिए कुत्तों का जश्न मनाने और गोद लेने के बाद में जागरूकता को बढ़ावा देने का दिन। और साथ ही मानव संसाधन क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों को सम्मानित करने और उनका अभिनंदन करने का दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन दिवस भी आज ही है। जो हमने कुत्तों के बारे में बात की तो आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। खतरनाक कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दे दी गई है और लोगों की सुरक्षा जरूरी है। निर्देश न मानने वाले अफसरों पर अवमानना का केस भी चलेगा। तो राज्य सरकारों को भी दे दिए गए हैं निर्देश। राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें। हर जिले में पूरी तरह से काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। जहाँ पर आवारा कुत्तों की आबादी ज्यादा है वहाँ जरूरत के हिसाब से एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। एंटी रैबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, जैसे कि पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, उन्हें हटाना होगा। और रैबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु जैसे कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी, उनके खिलाफ FIR दर्ज न की जाए। श्रोताओं, चाहे किसी भी वजह से ये फैसला जो है ये आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले का दुरुपयोग जो है वो प्रशासनिक कारणों से भी नहीं किया जाएगा तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे देश में डॉग लवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन ही यही है कि वो कुत्तों को अपने आसपास में, जो कुत्ते होते हैं भूखे प्यासे, उनको उनकी सेवा करते हैं, उन्हें देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, और फिर उन्हें सही ट्रीटमेंट भी दिलवाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनकी जो भावनाएँ हैं वो भी आहत ना हो और ये जो कानून आया है इसका कम से कम सही पालन ज़रूर होना चाहिए। बज चुके हैं और कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल। यूं ही बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको मैं बता देना चाहती हूं कि 10:30 के बाद हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें कि हम लोगों से बात करते हैं, और बात करने के लिए जो हमारा टेलीफोन नंबर है वो है 7018117091। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, 7018117091। तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपका जो भी कहना होगा या जो भी आप आज के संदर्भ में सोच रहे होंगे कि क्या आपके दिमाग में है, आप हमसे लाइव डायरेक्ट बात कर सकते हैं।

0: क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए जीजीआई के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। जीजीआई आप सभी को दे रहा है NAC A+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: जी श्रोताओं, तो ये महत्वपूर्ण संदेश आपने सुन लिए हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

और अब बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में आगे। बात तो आपसे बहुत सारी करना चाहती हूँ, बातें हमारे दिमाग में बहुत होती हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम के आखिर तक पहुँचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो कार्यक्रम में समय तो अब बड़ा कम रह गया है और जो जो बातें हमने करनी थी वो हम आपसे कर ही नहीं पाए। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए अभी हमारे पास बहुत समय है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बातें बहुत दिनों से जो आते जाते मैं महसूस करती हूँ, यहाँ से स्टूडियो से घर जाते वक्त तो या घर से स्टूडियो आते वक्त, जी हाँ समझ गए होंगे आप, ट्रैफिक की बात करने वाली हूँ। ट्रैफिक रूल्स का जो पालन है वो कितने लोग करते हैं, चाहे वो फोर व्हीलर पे हों, टू व्हीलर पे हों, या फिर जो पैदल चले होते हैं यात्री, चाहे वो ही हो क्यों ना हो। क्या आप लोग को पता है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, कैसे निभाने चाहिए? भाई देखिए, आपके पीछे कोई फोर व्हीलर वाला है, उसके पीछे कोई टू व्हीलर वाला चला है, या कोई पैदल भी चला है, आप लोग कोई गुटखा तम्बाकू खाते खाते चले हुए हैं और क्या करते हैं रास्ते में, जगह जगह पर अपना मुंडी निकाल करके उसे थूकते रहते हैं, कहाँ जाता होगा वो थूक, पीछे वाले के मुँह पर या जो पैदल चला हुआ है उसके ऊपर? सोचिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि आप आखिरकार करते क्या हैं। और हाँ एक बात और, रेस भी तो बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मज़ेदार लगाते हैं आप। एक लड़की अगर आपसे पास लेकर के थोड़ा सा आगे निकल गई है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रेस ही लगा रही होगी, क्या पता उसका समय हो रहा हो और उसे जल्दी जाना हो, आपकी ईगो पे आ जाती है और आप बोलते हैं नहीं भाई ये इसने पास ले कैसे लिया। अब यहाँ पे लड़का लड़की की कोई बात नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, आप किसी से भी रेस लगाना शुरू कर देते हैं, ईगो अपनी साइड पर रख कर के सड़क पर चला करें, क्योंकि ईगो कहीं भी होती है ना दोस्तों, तो वो मरवाती तो ज़रूर है। हम बहुत शांतिप्रिय लोग हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी हो, खास करके सड़कों पर तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और जामों में जो लोग फंसते हैं ना, फिर उन्हें ही पता होता है एक एक मिनट एक एक सेकंड की कीमत क्या होती है। उस विद्यार्थी को पता होता है जिसने जाकर के आगे एग्ज़ाम देना होता है, उस व्यक्ति को पता होता है जिसका कोई इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है और वो समय पर पहुँच नहीं पाता है, कितना बुरा लगता है ना।

0: तो भाई मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत अब आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। गीत को गाया है मन्ना डे ने।
1: ए भाई दर्द दे।

सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

तो भाई क्या आप देख करके चलते हैं? ए भाई, ओ बहन, क्या आप देख करके चलते हैं? आगे ही नहीं, पीछे भी, और दाएं ही नहीं, बाएं भी, या अपनी नाक के सीध में ही देख करके चलते हैं बस, कि भाई हमें अपना रास्ता पकड़ना है और निकलना है, किसी भी तरह से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। देखिए, गीत जो है ना, ये बहुत पुराना गीत है, कब बन गया था, तब भी बड़े शहरों में शायद ट्रैफिक का यही हाल रहता होगा। और अब तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा लगता है जब सड़कों पे ट्रैफिक जाम होता है कि इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं। हम मन ही मन में बहुत कूदते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई उसी भीड़ का एक हिस्सा हम भी तो होते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, और हमें भी अपनी समझ से ये चीज़ें करनी ही चाहिए कि अगर हमारा एक ही ऑफिस है और आसपास में ही हम हमारे घर हैं, रहते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, या उस वही रास्ता है हमारा, मेरा ऑफिस थोड़ा सा जल्दी पड़ता है, आपका थोड़ा सा बाद में पड़ता है, तो एक दूसरे को कार पूल कर सकते हैं हम, एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। एक दिन एक अपनी गाड़ी ले जाए, दूसरे दिन कोई दूसरा अपनी गाड़ी ले जाए, और ऐसा बहुत समय पहले लोग करते भी थे, ताकि हमारी सड़कों को भी तो थोड़ी सी सांस आए। 92.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के शो के सबसे कड़क सेगमेंट का। वैसे हमारी इस शो में वैसे सेगमेंट्स होते नहीं हैं, सेगमेंट एक ही होता है, वो जो हमने आपको बताया लाइव वाला, लेकिन आज थोड़ा सा ये बीच में मैंने रख दिया है। आज तो है 20 मई, और कल क्या है आपको पता है? 21 मई, और है इंटरनेशनल टी डे। नहीं, जल्दी जल्दी बोल दिया हमने, आपको नहीं समझ में आया भाई? चाय दिवस। भाई चाय की तैयारी तो आज से ही शुरू होनी चाहिए, है ना? नहीं, चाय तो आप हर रोज ही पीते हैं, क्योंकि चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं, हमारा इमोशन है।

सुना आपने चाय की प्याली की कड़क आवाज़?

हमें पता है श्रोताओं, जब आप अपने अपने ऑफिसेज पहुंचते हैं तो काम बाद में शुरू होता है, पहले चाय की प्याली आती है आपके टेबल पे।

हर दिल जो प्यार करेगा, अनु मलिक की आवाज़ में सुना आपने ये खूबसूरत सा गीत। जी, ये गीत वक्त की गर्दिश में कहीं खो गया था और हम ढूंढ करके लेकर आए आप सबके लिए। और वैसे श्रोताओं, ये गरम चाय की प्याली जो है उसको पिलाने वाली ही क्यों हो, आप खुद बनाइए ना, उठिए चाय बनाइए और अपनी पसंद से चाय पीजिए। और अगर उस चाय में कोई कमी रह जाए तो फिर आप किसी को कह भी नहीं पाएंगे कि भैया तुमने ये अच्छी नहीं बनाई है। अक्सर होता है ना ऐसा कि चीनी कम है या फिर पत्ती तेज़ कर दी, तो अपनी पसंद से चाय बनाना सीख लीजिए और जब चाहे फिर चाय पीजिए। वैसे चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ये तो हम अक्सर कहते रहते हैं अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन अब चाय में भी बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं, है ना। जानते हैं आप सभी लोग, लेमन टी बनती है और फिर हर्बल टी भी बनती है, बहुत सारी तरीकों की चाय बनती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है, हेल्थ बेनिफिट्स उसके हैं। केवल पत्ती के साथ दूध वाली चाय से थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ी सी गैस्ट्रिक उससे हो जाती है।

0: और जब बात इमोशंस और एनर्जी की हो ही रही है तो हमारे बप्पीदा और उषा उत्थुप जी से बेहतर और कौन हो सकता है। तो चलिए चाय की चुस्कियां लीजिए और बप्पीदा के डिस्को बीट्स पर अपने जगह पर ही नाचना शुरू कर दीजिए। सुनते हैं ये धमाकेदार गीत।
1: कोई वहाँ आहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे।
0: जिसको डांसर फिल्म से ये गीत है
1: आहा नाचे नाचे,
0: बप्पी लहरी और उषा उत्थुप की आवाजी।

श्रोताओं एक मिनट ठहरिए आप ज़रा। आज एक और महान दिन है, जी हाँ, इंटरनेशनल एचआर डे। तो जितने भी एचआर ऑफिस में बैठ करके रंगोली बनाने या फिर सैलरी क्रेडिट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सभी को सलाम। और इसी बात पर बॉलीवुड के सबसे चुलबुले गीत ये जो हैं आपके नाम।

भाभी लाहड़ी और उषा उत्थुप की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत डिस्को डांसर फिल्म से 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम है और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कार्यक्रम में कि 10:30 या फिर 35 मिनट के बाद अगर कोई श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 7018117091। और जल्दी से मैं आपको एक जानकारी दे देती हूँ। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि सुरखानी नाला से राजेंद्र कुमार हाउस रोड के मरम्मत कार्य के चलते ये मार्ग 20 मई से लेकर 30 मई 2026 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए पटोला से मोहली वाया फटी रोड का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, तो छोटे से अंतराल के बाद अब फिर से आ गए हैं हम, हाजिर हो गए हैं करने आप सभी से बातचीत। तो अब हम देखते हैं कि कौन है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। जैसा कि मैं बड़ी देर से कह रही थी कि श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं, तो एक श्रोता है फ़ोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
2: नमस्कार जी।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार जी। भैया जी कैसे हैं?
1: जी नमस्कार जी। जी मैं ज्योति पठानिया बोल रही हूँ।
2: हाँ जी, हाँ जी ज्योति जी। हाँ जी, हाँ जी
1: जी। आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
2: मैं मनीष बात कर रहा हूँ, वंडर बंजारा मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे वंडर बंजारा के नाम से।
1: जी आप क्या कहना चाहते हैं बताएं।
2: हाँ जी, आपने मैं एक्चुअली
1: पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। बताएं
2: जी, ऐसा है ना, कल जो यहाँ पर आग लगी थी, एक तो पहली चीज मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ और आप पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, मैं वैसे ही बताऊंगा आपको। आग तो मेरे घर के पास में यहीं पर तपोवन एरिया में लगी थी, जो कल यहाँ पर काफी जंगल में आग लग गई थी।
1: जी हाँ, वैसे हम कार्यक्रम में शुरू से बात भी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप कार्यक्रम सुन भी रहे होंगे। तो
2: हाँ जी, हाँ
1: ये
2: जी,
1: जो
2: हाँ जी।
1: आग लगी थी, आपने क्या लाइव देखी वो आग अपनी आंखों से देखी?
2: मैं 2-3 बार गया उधर देखने के लिए कि बुझी कि नहीं बुझी, बट फायर ब्रिगेड वाले आ रखे थे, आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी। एक्चुअली पता लगा वहां के लोकल लोगों से कि आग नीचे की तरफ से, जो तपोवन को नीचे रास्ता जाता है सामने बागनी एरिया को, वहां से ऊपर की तरफ आग आई है। अब पता नहीं लगी कैसे, ये तत्वों का पता नहीं लगा कैसे लगी, अपने आप लगी गर्मी के कारण कि क्या हुआ है, बट आग काफी ज्यादा फैल गई थी, धुआं बहुत हो गया था। जो तपोवन आश्रम वाला चौक है वहां बहुत ज्यादा धुआं, फायर ब्रिगेड पुलिस भी आ रखी थी, लोकल भी लगे हुए थे, तो जंगल के अंदर पाइप

0: पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है वो, और रात का समय था, 9 बजे की बात है, आग तो 7-1 बजे तक लग गई थी, 6-7 बजे तक।
1: जी
0: तो बहुत कोशिश करी, बुझी नहीं। तो मैं फिर उसके बाद दोबारा भी गया 1 घंटे बाद, तो बहुत ज्यादा आग थी, बहुत ही ज्यादा थी
1: जी। तो
0: जी,
1: आपको क्या लगता है कि आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं?
0: देखिए, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, गर्मी 3-4 दिन से बहुत ज्यादा थी, चीड़ का पेड़ है। चीड़ का पेड़ क्या होता है कि ये एक तो सूखी लकड़ी होती है बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्या पता गर्मी के चक्कर में लग गई हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई लगाई जाती है, बट मेरा ऐसा मानना तो नहीं है क्योंकि इतने साल हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 साल मुझे रहते हुए हो गए, तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि लगाई जाती है।
1: पहली बार देखी है क्या?
0: नहीं, मैं पहले यहाँ पे गया था, चंबा गया था, तो वहां भी एक बार देखी थी। यहाँ पे सामने चामुंडा जी के इधर, हिमानी चामुंडा के उधर भी थोड़ी ऊपर जंगलों में आग लगी हुई दिखती रहती है कई बार छत से, थोड़ी बहुत कई बार
1: जी।
0: तो मैं देख चुका हूँ, पहाड़ों पे उत्तराखंड में भी देखी थी, 6-7 बार देख चुका हूँ, बट ये इतनी पास से मैंने पहली बार देखा। बहुत ही ज्यादा थी, मतलब पूरी लाइन की लाइन थी। तो मैंने वीडियो भी डाली है इसकी अपने चैनल पे ना, कल बना के।
1: जी हाँ, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन हमें लगता है जंगली जानवर और जो पशु पक्षी होते हैं जो, उनके घोंसलों पर बहुत असर पड़ता है, वो उनका आशियाना उजड़ जाता है।
0: हाँ जी,
1: अगर जो लोग हैं वो जानबूझकर करते हैं ना, तो उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए। कई बार होता है कि वो जो जलती हुई सिगरेट है वो बुझाते नहीं है और उसको वैसे ही फेंक देते हैं, टुकड़ा छोटा सा। आपको पता है ये चलाफू होते हैं और चलाफू तो बारूद का काम करते हैं, एकदम आग पकड़ती है।
0: बिल्कुल सही। हाँ, हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि कल मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, दो लोग आपस में बात कर रहे थे वहां अंधेरे में कि भाई ये लगाई जाती है। तो मैंने वीडियो भी जब डाली इंस्टाग्राम पे मेरे
1: जी,
0: तो वहां पे भी कमेंट्स में दो लोगों का यही कमेंट आया कि भाई ये आग लगाई जाती है, ये है वो। तो अब पता नहीं ये लगाई जाती है या लगती है, प्राकृतिक आपदा है जो भी है, बट जो भी है गलत है, क्योंकि बहुत सारे जानवर अंदर, चिड़ियां वगैरह, इतने सारे पक्षी पशु पक्षी रहते हैं, तो बड़ा दिक्कत वाली चीज तो है ही है
1: जी।
0: हाँ
1: जी मुनीश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद जी,
1: जी समय निकाला आपने, शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।
1: तो ये थे मनीष वर्मा जी, जिन्होंने रेडियो कुंजन धर्मशाला से बातचीत की और बताया कि कल किस तरह से, और हम भी शुरू से ही आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो आग थी वो बड़ी भयंकर थी, और अभी इसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, हमें नहीं पता है। श्रोताओं, और वाकई में कई लोग जो हैं वो घासनियों के चक्कर में भी आग लगा देते हैं कि उन्हें जो नरम नरम घास है वो उनके पशुओं के लिए नहीं मिलती है नीचे से, अगर वो चलाफू पड़े रहते हैं तो जानबूझ करके भी लगा देते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं। उनके पशुओं के लिए तो हो जाएगी, लेकिन अंदर जो जंगली जानवर हैं वो मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, उनका क्या? उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते आप?

और आज मधुमक्खी दिवस है तो गुनगुनाती हैं गाना भी मधुमक्खियां भी भंवरे भी। आपको पता है ये सभी झुलस जाते हैं, इनके छत्ते भी होते हैं वहां पर। और इतनी सारी परेशानियां सह कर भी उसके बावजूद भी ये आपको गाने सुनाते ही रहते हैं।

सुनिधि चौहान, उदित नारायण और अजय अतुल की आवाज़ों में आपने सुना अग्निपथ फिल्म का ये गीत। 92.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। लेते हैं हम आज न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं। ट्रंप की चेतावनी है कि हमें फिर से ईरान पर करना होगा हम

और पुतिन चीन पहुंचे, रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। सितंबर में नई दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। हिमाचल में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है, ऐसा कहा जा रहा है। तेल कंपनियों की जनता से विशेष अपील है, पैनिक बाइंग ना करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर करें भरोसा।

पंचायतों में 10 से अधिक पहुंचे प्रत्याशियों की संख्या, तो दोबारा प्रिंट करवाने पड़े 1.5 लाख बैलेट पेपर। और अब मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना होगी आरंभ, ऐसा कहना है हमारे सीएम साहब का।

26 से 12 लाख वोटर करेंगे कांगड़ा की। 846 पंचायतों में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 26, 28 और 30 मई को होने वाला है मतदान। आपको पता है श्रोताओं, एक मुहिम चलाई गई है कि नशा मुक्त चुनाव हो तो कितना अच्छा है, है ना। किसी के बहकावे में आपने नहीं आना है कि आपको, हम पहले भी हमने आपसे यहाँ से ही ये कहा है अपने दोस्त माइक के ज़रिए, मैंने आपको बताया था कि किसी के ऐसे बहकावे में बिल्कुल भी ना आइएगा कि हम पार्टी करवा देंगे आपको, बस आपने जो अंगूठा है या फिर जो बटन है वो हमारे नाम का दबाना है। उम्मीदवार योग्य होगा, आपके सारे काम करवा पाएगा और वो आगे चल कर जा कर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात कर पाएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है और सबसे बड़ी बात ये कि उसके पास कितना समय है आपके काम करवाने का, कहीं वो अपने किसी कार्यों में बिजी तो नहीं है।

और श्रोताओं, एक जानकारी और दे देते हैं आपको। ब्यास नदी में डूबने से पंजाब के युवक की मौत हो गई है और सोमवार को करेरी में डूबा था एक छात्र। कालेश्वर महादेव मंदिर घूमने आया था 19 वर्षीय युवक और नहाते समय हो गया हादसा। जानकारी के अनुसार विशाल अपने 8 दोस्तों के साथ कालेश्वर महादेव मंदिर घूमने आया था और इस दौरान सभी युवक ब्यास नदी में नहाने के लिए उतरे। नदी में पानी कम होने के चलते विशाल जो था वो नदी पार करके दूसरी ओर पहुंच गया, लेकिन वापस लौटते समय वो गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। डूबता देख अपने साथियों ने शोर मचाया। आसपास मौजूद लोगों ने पहुंच करके उसे नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो जा चुका था। तो दोस्तों, ये जो पानी है ना, इसे आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल ना सोचें कि नदी तो गहरी नहीं है और हमने एक बार पार कर ली है तो दूसरी बार भी, अब तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि कोई बात नहीं, पानी कम है तो हम उस पार लग ही जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको भी ज़रूरत है और ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, लेकिन उससे भी हम लोग सबक बिल्कुल भी नहीं लेते हैं।

और अब शिक्षा की बात भी कर लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में 2 वर्ष में 21वें से छठे पायदान पर पहुंच गया है हिमाचल। जी, सरकारी स्कूलों में पढ़ने की क्षमता में 10% से अधिक सुधार दर्ज किया गया है। आईटीआई ने लॉन्च की है वाटर शेड AI एप्लीकेशन। 3 से 8 मिनट में मिलेगी किसी भी जल ग्रहण क्षेत्र की रिपोर्ट।

श्रोताओं, अभी थोड़ी देर पहले आपने गुनगुनाए गाना रे गीत सुना ना, भंवरों की गुंजन के बाद अब बात करते हैं शब्दों के जादू की। आज हिंदी साहित्य के महान छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती भी है, जिन्होंने प्रकृति की सुंदरता को अपने शब्दों में पिरोया है। और सिर्फ साहित्य ही क्यों, आज साउथ सिनेमा के भगवान और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव साहब की भी तो जयंती।

ये गाना वर्ष 1975 में आई प्रसिद्ध निर्देशक नरेश कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म दो जासूस का है। इसे संगीतकार रविंद्र जैन की धुन पर गीतकार हसरत जयपुरी ने लिखा था और इसे लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने अपनी आवाजें दी। गाने में नैया यानी नाव और इंसान के जीवन या रिश्ते का ये प्रतीक है और पुरवैया जो है पूर्वी हवा उस दैवीय शक्ति भाग्य या प्रेम का प्रतीक जो जीवन को आगे बढ़ाता है। गाने के शुरुआती कोरस यानी कि बैकग्राउंड में मराठी लोक शैली कोली गीत का प्रभाव है। दरिया चा राजा देवा हो देवा तेरे भरोसे छोड़ दी नैया नैया का अब तो तू ही खेवैया। और ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि जब इंसान खुद को पूरी तरह किसी ईश्वर या अपने साथी के भरोसे सौंप देता है तो उसकी जीवन नाव अपने आप सही दिशा में चल पड़ती है। सागर में जितनी तरंगे हैं मानव में उतनी उमंगे मनवा में उतनी उमंगे हैं। ये दिखाता है कि चिलचिलाती धूप के बाद जब पुरवैया चलती है तो वो केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि इंसानी मन में भी नए उत्साह और उम्मीदों का संचार करती है।

और इसी गीत के साथ अब हम आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में, और अब हम बात करते हैं जी हाँ अभी गर्मी के बारे में। तो जब मधुबन खुशबू देता है और सागर सावन देता है ना, तो हमें वाकई में थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। और यहाँ पर बात हो रही है ठंडे पानी की। ठंडा पानी है ना, ये फ्रिज का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्रोताओं, आप अपने पास घड़े रखिए, मटके रखिए, अपने घर के अगर आपका जो घर है वो कहीं रास्ते में आता जाता है, मतलब लोग वहाँ से गुजरते हैं, तो वहाँ पर बाहर भी आप एक मटका रख सकते हैं। और आपको पता है कि हम जब अभी 2 दिन पहले राजस्थान गए थे, बहुत ज़रूरी काम था, हमें जाना पड़ा, तो मटका एक स्पेशल नया खरीद करके छोटा सा उसको अपनी गाड़ी में रख करके, जी हाँ, धर्मशाला से लेकर के हमने अरावली हिल्स तक उसे ट्रैवल करवाया। और पूरे रास्ते हम उसी मटके का ठंडा ठंडा पानी पीते पीते गए, हमें गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई और हमें बाहर से मिनरल वाटर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उस पानी ने हमारा बहुत साथ दिया।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिट्टू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
3: मिली तो है।
2: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
3: लाए हैं।
4: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
3: उससे बड़ी चीज
4: तो क्या लॉकेट,
3: उससे भी बड़ी
2: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
3: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
4: ये तो सोने से भी अनमोल है।
5: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
6: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
7: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
6: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
8: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
9: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
10: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
11: और मैं हूँ विकास।
10: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
11: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
11: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
13: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
14: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
13: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
14: एक्सक्यूज मी सर।
13: क्या हुआ?
14: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
13: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
14: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
13: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
14: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
13: श्योर
14: श्योर सर।
15: चलो बेबी चाय।
16: थैंक यू।
15: आपने आज की न्यूज सुनी?
16: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
15: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
17: ओह नो।
16: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
15: और क्या।
18: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़िया जो कि सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे। मैं अक्सर कहता हूं और बार बार कहता हूं कि जिंदगी में जो है वो खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है श्रोतों, सेहत अच्छी रहती है। तो कार्यक्रम चुनाव संवाद लेकर मैं हाजिर हुआ हूं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए शख्स के साथ। आज ये शख्स हमारे बीच में है, कौन है, कहां से है, इनके बारे में हम जरूर जानेंगे। आइए तो लेकर चलते हैं सीधा आपको अनिल कपूर उफ सोनू भाई की ओर। चलिए सोनू जी, आपका वेड़ी गुंजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
1: मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुंजन रेडियो के सभी स्टाफ का, सचिन कपूर जी स्पेशली आपका, जो आपने मुझे गुंजन रेडियो में बुला के अपने विचारों को रखने का मौका दिया है।
0: सोनू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और इस बिजी शेड्यूल में आप आए हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पंचायत में चुनाव है और सभी डोर टू डोर जो है वो अपने अपने चिन्ह को लेके जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो सोनू जी सबसे पहले तो बताइए आपको चिन्ह क्या मिला हुआ है?
1: सचिन जी मुझे चुनाव चिन्ह स्टार है, तारा, इसको हिंदी में तारा बोल सकता हूँ मैं।
0: क्या बात है।
1: और कोशिश करूंगा कि तारा चमकेगा इस बार, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसको चमकाने की। मैं अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश और लोगों का योगदान मुझे मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है अभी तक।
0: चलिए बिल्कुल जी, तारा होता ही चमकने के लिए है, और हम चाहते हैं कि आपके नाम के पीछे जो तारा लगा हुआ है उस पर लोग जो वो बटन दबाकर आपको आसमान में जरूर पहुंचाए। बहरहाल श्रोतों, आइए कार्यक्रम को आगे जरूर बढ़ाएं, लेकिन आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला। और आज हमारे साथ मौजूद है बिल्कुल अनिल जी, सोनू भाई जिनके अनिल जी जिनको सोनू भाई के नाम से भी जाना जाता है। और अनिल जी नरवाना खास से जो है वो उप प्रधान पद के लिए लड़ रहे हैं, उप प्रधान पद के जो है वो प्रत्याशी हैं। तो चलिए अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप अपने बारे में कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई है और किस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं।
1: सचिन जी, आपके माध्यम से हम अपने विचारों को गुंजन रेडियो में रख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे विचारों को सुनेंगे। हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, जीरो से स्टैंड लिया है, अब चलो भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है। मैंने अपनी प्लस टू गवर्नमेंट सीनियर स्कूल टंग नरवाना से करी हुई है, टेंथ मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कस्बा नरवाना से करी हुई थी और उसके बाद प्लस टू के बाद मैंने कुछ नहीं करा है। प्लस टू के बाद मैं अपना थोड़ा जो भी रोजमर्रा का काम था वही करता हूँ अभी तक तो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात। किस तरह की सोच में ये आया कि मैं उप प्रधान पद के लिए जो है अब वो खड़ा होता हूँ, क्या कुछ बदलाव आप अपनी नरवाना खास में करना चाहते हैं?
1: बहुत सारे बदलाव हैं सचिन जी जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे युवाओं को नशे के प्रति डिमोटिवेट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि नशा मीठा जहर है जो धीरे धीरे युवाओं को खत्म कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं युवाओं के साथ जोड़ना चाहता हूँ, युवाओं को अपने साथ लेके चला हुआ हूँ, बहुत सारे युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे युवा का प्यार, बूढ़े बच्चों बुजुर्गों का सबका प्यार मिल रहा है मेरे को।
0: चलिए आपने सोनू जी युवाओं को नशे से दूर भगाने के लिए जो है वो पहला प्रण लिया है, तो क्या लगता है आपको कि आज की इस तारीख में जो है वो सूखा नशा कितना फैल चुका है? नरवाना की बात कर लें या पूरे धर्मशाला की बात कर लें?
1: नरवाना में तो सचिन जी बहुत अच्छा, मतलब अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये चरम सीमा पे बहुत फैला हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, पर फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जितने युवा हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, हम तो उनको भी यही सलाह देने की कोशिश करेंगे कि इन चीजों से दूर रहें।
0: चलिए जी और भी बातचीत करेंगे सोनू के साथ, लेकिन आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। कार्यक्रम का नाम है चुनाव संवाद। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए लेके चलते हैं आपको अनिल कपूर उर्फ सोनू की ओर। और सोनू जी, चलिए जानते हैं अब आपको कि अगर आपको आशीर्वाद मिलता है नरवाना खास के लोगों का अपनी पंचायत से, क्या क्या और डेवलपमेंट जो है वो अपनी नरवाना खास में करना चाहेंगे?
1: बहुत सारे कार्य हैं सचिन जी हमारी पंचायत में जो करने लायक हैं। सचिन जी, सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों के लिए रहेगी जो हमारी पंचायत में अभी जुड़े हैं। हमारे कुछ लोग, कुछ परिवार जो अभी कैंट बोर्ड से निकल के पंचायत में आए हैं, तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले जो होगा मेरा उन्हीं लोगों के लिए रहेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जैसे कम्युनिटी हॉल हो गया गरीब परिवारों के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे परिवार हैं ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हॉल, पार्क, ओपन एयर जिम,
0: अच्छा ये सारी चीजें,
1: मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपनी तरफ से करूंगा।
0: चलिए ठीक है जी, ये तो वक्त बताएगा कि आपको आशीर्वाद मिलता है और आप इन चीजों पे खड़ा उतरते हैं या फिर नहीं। फिलहाल श्रोताओं, आप सभी बने हुए कार्यक्रम चुनाव संवाद के साथ और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम चुनाव संवाद इस समय चला हुआ है। कार्यक्रम में आज हमारे साथ नरवाना खास के उप प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं सोनू जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जी, सोनू जी से और भी बातें जो है वो जान लेते हैं। सोनू जी, आपने ओपन जिम की जो है वो बात की है, तो क्या नरवाना खास में इस तरह का स्पेस है कि वहाँ पर आप ओपन जिम बना सको, या फिर आपने पार्क की बात की है तो वहाँ पर इतना स्पेस है?
1: स्पेस का सचिन जी थोड़ा इशू है, पर मैं जैसे जो भी खाली स्पेस है फॉरेस्ट वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे छोटे बच्चे युवा अपना जो टाइम है वहाँ स्पेंड कर सकें, बुरी चीज़ों से दूर रह सकें, बच्चों को भी थोड़ा मतलब पार्क में जाने का घूमने का, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो इवनिंग में मॉर्निंग में थोड़ा वॉक वगैरह कर सकें, इस चीज़ का थोड़ा मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। अगर मुझे नरवाना पंचायत या नरवाना खास के लोग जो भी मतलब मुझे आशीर्वाद देते हैं, काम मुझे प्रधान पद में भारी मतों से जिताते हैं, तो मैं उनकी किसी भी कोशिश में या किसी भी चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, उनके विचारों पर अच्छा उतरूँगा।

0: FM 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है चुनाव संवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, कि निर्वाणा खास के उप प्रधान पद के लिए अनिल कपूर सोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजन लेके चले हैं एक निर्वाणा खास के लिए, कि किस तरह से जो है वो निर्वाणा खास को अगर ये जीतते हैं तो किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट जो है ये लाना चाहते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। सोनू जी, कूड़ा कचरा एक आम समस्या है और ये आम समस्या आप अपनी पंचायत में किस तरह से इसका समाधान करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है पंचायत में वो गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल वो वाली गाड़ी तो घूमती नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं?
1: सचिन जी, इस चीज के लिए हम अपने जो हमारे प्रधान पद पे जो भी आएंगे हमारे प्रधान जी, उनसे डिस्कस करेंगे कुछ जो भी होगा। वैसे तो वेस्ट बोरियर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो घर घर से कचरा ले जाते हैं, वो वेस्ट बोरियर वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना समय अपना टाइम हमको देते हैं, हमारे घर से हमारा वेस्टेज कचरा जो उठा के लेके जाते हैं, उनकी भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमसे जितना पॉसिबल हो पाए हम इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, डस्टबिन लगाएंगे, बहुत सारी स्कीम्स जो सरकार की तरफ से कचरे को खत्म करने की मिलती हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे अपनी पंचायत।
0: चलिए सोनू जी, आपकी ये कोशिश जो है, अगर आप जीते हैं तो हम फिर आपको जरूर बुलाएंगे वेड़ी गुंजन में और देखेंगे आप कितनी कोशिशों पे जो है वो खरे उतरे हैं। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का कार्यक्रम चुनाव संवाद में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आपको आज के गेस्ट की ओर। तो सोनू जी, किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है कि आपकी पंचायत में आज दिन तक सभी सड़कें ठीक हैं, सभी गलियां ठीक हैं, और नहीं है तो आप किस तरह से उस पर नजर फिराते हैं?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सचिन जी आपने मेरे से किया है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते जो हैं वो हमारी पंचायत में बहुत टूटे हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ हैं, बहुत सारे रास्तों की मरम्मत करने को है, बहुत सारे घरों को रास्ता जो है वो अभी पक्का ही बोल सकते हैं हम, जो नहीं बना हुआ है। हमारी प्योरिटी रहेगी उन सभी घर को रास्ता बनाने की, जो टूटे फूटे रास्ते उनको ठीक करने की, नालियां पक्की करने की, स्ट्रीट लाइट लगाने की अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या हम करके दिखाएंगे, अगर लोग मुझे भारी मतों से जिताते हैं, लोग मुझे योगदान देते हैं, लोगों का सहयोग मेरे साथ रहता है। वैसे तो सभी मोस्टली यही बोल रहे हैं कि मतलब लोगों का योगदान है भी मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं है, मनाही किसी की तरफ से नहीं है। मेरे से जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं अपनी तरफ से करूंगा।
0: चलिए, आपने स्ट्रीट लाइट की बात कही है तो मुझे लगता है नरवाना खास में कुछ एक स्ट्रीट लाइटें तो लगी भी हैं।
1: जी, लगी हुई हैं, पर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इन चीजों की। मैं कुछ घरों में जा रहा हूँ बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करने, डोर टू डोर हो रहा हूँ, तो बहुत सारे बुजुर्ग हमारे, कुछ युवा, कुछ हमारी बहनें, युवा बहनें जो हमसे ये इसी तरह की बात करती हैं कि भैया हमारे घर को रास्ता नहीं है, भैया हमारे घर की तरफ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, भैया हमारे घर का रास्ता टूटा हुआ है, ये रिपेयर करवाना है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश क्या ही बोल सकते हैं सचिन जी, मैं तो यही करूंगा कि मैं उसको पक्का करूंगा।
0: तो क्या लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ आप गए वहाँ काम बिल्कुल भी नहीं हुआ?
1: ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, सिटिंग पंचायत थी उसके बारे में हम बुराई तो नहीं कर सकते, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं किया है, बहुत सारे काम उन्होंने भी अपनी तरफ से किए हैं। पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, कुछ नए परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग हमारे साथ कैंट बोर्ड से आए हुए हैं, अभी जुड़े हैं जस्ट बेचारे, तो ऐसा अभी पंचायत में आए हैं लोग तो उनका थोड़ा अपनी तरफ से जो भी होगा वो मैं करूँगा।
0: तो सोनू जी, चलिए, आवारा पशुओं की कहानी जो है वो पूरे धर्मशाला में है, जाहिर सी बात है नरवाना खास में भी होगी। अगर आप भारी मतों से जीतते हैं या फिर जीत कर आते हैं तो किस तरह से फिर इन आवारा पशुओं का आप एक गौशाला बनाएंगे या फिर किस तरह से देखते हैं?
1: सचिन जी, अगर पॉसिबल हुआ तो हम गौशाला बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये आवारा पशुओं का जो आपने बात करी है ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर विषय है ये। इस पे मैं आपसे मतलब अपनी तरफ से चर्चा करना चाहता था, पर इसका जो आप जैसे बोल रहे हैं गौशाला बनाने की, तो इसके लिए तो हमको काफी फंड चाहिए। अगर सरकार हमको फंड देती है तो हम ये जरूर कार्य करेंगे, इस कार्य में हम पीछे नहीं रहेंगे। हम खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, हमको भी पता है कि कितनी मेहनत करके खेतीबाड़ी की जाती है, और खेतीबाड़ी में अगर हम खेतीबाड़ी करते हैं और वो उसका नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई और उसका कितना हमको वो नुकसान झेलना पड़ता है ये शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये जो समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, इस समस्या का भी समाधान हम अपनी पंचायत की तरफ से करने की कोशिश करेंगे। आवारा पशुओं को गौशाला में छोड़ेंगे, जो भी जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी पंचायत के तहत वो हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे।
0: चलिए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम चुनाव संवाद इस समय चल रहा है। कार्यक्रम में हमारे साथ अनिल कपूर जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्यार से सोनू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं। अनिल कपूर जी, आपने बहुत सी बातों पर जो है वो चर्चाएं की हैं, बहुत सी चीजों पर आपने चर्चा की है कि अगर आप जीतते हैं तो इस प्रकार से जो है वो पंचायत में मैं करूंगा, इस प्रकार से करूंगा। आपको क्या लगता है कि अनिल जी, तो क्या लगता है आपको कि आपने जिन विषयों पर चर्चा की है, इन विषयों पर आप काम भी करेंगे, 101% करेंगे, या फिर लगता है कि कुछ टास्क आपने टफ बोल दिए कि नहीं होगा काम?
1: सचिन जी, आपने जितने भी मेरे से ये चीजें पूछी हैं, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है करने के लिए। अगर पंचायत चाहेगी, लोगों का योगदान रहेगा, तो मैं इन सभी जितने भी बातें मैंने आपसे करी हैं, जो जो भी विचार मैंने आपके आगे रखे हैं, इन सब पे मैं खरा उतरूंगा। अपनी तरफ से मेरी हर काम के लिए प्योरिटी रहेगी और अपनी तरफ से मैं इन सभी कामों को करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करूंगा, मतलब मैं करके दिखाऊंगा। अगर लोगों का योगदान मेरे साथ रहता है, लोग मुझे भारी मतों से जिताते हैं, लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, तो मैं इन सभी चीजों पे बहुत अच्छा उतरूंगा।
0: चलिए अनिल जी, पाक की बात तो आपने कही है, लेकिन बुजुर्गों के लेकर कुछ खास प्लान है आपके पास?
1: जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम फुटपाथ बनाएंगे पार्क के साथ साथ, जिसपे कि बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग लोग जो भी हैं, मतलब बुजुर्ग जो हमारे गांव के हैं, वो फुटपाथ पे वॉक कर सकते हैं, अपना इवनिंग का टाइम बैठ के थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं साथ में, प्लस मॉर्निंग में भी आके उधर फ्रेश एयर ले सकते हैं। आपको पता, हमारी पंचायत का वातावरण बहुत अच्छा है, पंचायत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। पुरानी पंचायत ने एक पार्क बनाया हुआ है, वहाँ भी बहुत सारी भीड़ होती है, शाम को बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं। तो ऐसा है कि बुजुर्गों के लिए कोई खास प्लान तो जैसे

0: है, वहाँ की हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं, वहाँ की फिजाएं जो है वो बाकमाल है। तो और किस प्रकार से आप उस नेचुरल चीज को जो है, उस इन्वायरमेंट को जो है वो फ्रूटफुल बना सकते हैं?
1: सचिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे किया है। जिस पार्क और ओपन एयर जिम की आप बात कर रहे थे, उनके अगल पार्क के साथ थोड़ा उस गार्डन टाइप थोड़ा करने की कोशिश करेंगे,
0: गार्डन,
1: बाकी जो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी। अभी मैं आपको ऐसे क्लियरली बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा शेड्यूल पंचायत में पता नहीं आता है कि नहीं आता, पर हम अपनी तरफ से लाने की कोशिश करेंगे।
0: एक गार्डन जो है वो वहां पर लाने की कोशिश करेंगे, और ग्रीनरी जो है वो वहां पर

बात है। तो होप सो, और हम भी दिल से आशा करते हैं कि आप जरूर जीतें और जीत कर जो है वो उप प्रधान का पद पर आप नियुक्त हों। बहरहाल श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: जानते हैं अनिल कुमार जुड़े हैं, जिन्हें सोनू के नाम से जाना जाता है। क्या कुछ खास प्लान है आपके अपनी पंचायत के लोगों के लिए सोनू जी?
1: सचिन जी, बहुत सारे काम पंचायत में ऐसे हैं जो नहीं हुए हैं, वो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे परिवार जो गरीब परिवार हैं, जिनको सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी फंडिंग्स जो आती है, वो उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। परिवारों को मैं बीपीएल में लाऊंगा। जो जरूरतमंद परिवार हैं, उनके साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हमारा ऐसा नहीं है कि हम मतलब पंचायत में इलेक्शन के लिए आए हैं या किसी ओहदे के लिए आए हैं। हमारा वो मेन मुद्दा नहीं है। अभी हम उस चीज़ की, वो ऐसी चीज नहीं चाहते हैं। हम जमीन से उठे हुए इंसान हैं और जमीन में ही हैं। अभी भी हम बहुत बड़े नहीं हैं। लोगों के साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, हमारा काफी पुराना रिश्ता है लोगों के साथ। मैं रह के करना चाहता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं मैं पंचायत में रह के नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं पंचायत में आया हूँ, इलेक्शन में आया हूँ। तो अगर मैं जीतता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ परिवारों को जैसे भी जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, घर बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, वो दिलवाऊंगा। लोगों के घर के लिए रास्ता नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, किसी किसी लोगों के घर में अभी तक शौचालय नहीं है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा कुछ प्लान करके चला हूँ। ये जितनी भी मेरे माइंड में प्लानिंग है, ये मैं करके दिखाऊंगा लोगों को।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए श्रोतों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेणी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी चुनाव संवाद आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेणी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम चुनाव संवाद आप सभी सुन रहे हैं मेरे यानी सचिन कपूर के साथ। और आइए जी अनिल कुमार के पास सीधा लेके चलते हैं आप सभी को। अनिल जी, आपने अपनी पंचायत को लेकर काफी सूझबूझ जो है वो रखी है, काफी समझ जो है वो रखी है, लेकिन एजुकेशन के मामले में आप किस तरह से देखते हैं कि युवाओं को आप किस तरह से मदद करेंगे एजुकेशन सेक्टर में?
1: सचिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल मुझसे आपने ये किया है। मैं पंचायत के माध्यम से लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूंगा, जहां पे गांव के युवा, छोटे बच्चे वहां जाके अपनी शिक्षा को ले सकते हैं, बुजुर्ग भी वहां जाके। कोशिश करूंगा कि वहां पे कुछ ऐसी बुक्स भी रखी जाएं, ऐसी किताबें भी रखी जाएं, ऐसी चीज़ें भी रखी जाएं जहाँ पे जाके बुजुर्ग भी अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें, बुजुर्ग भी अपना टाइम वहाँ पे काट सकें। और स्टोरी बुक्स रखूंगा, धार्मिक बुक्स रखूंगा, इस टाइप का जो भी मेरे से हो पाएगा मैं करूंगा। लाइब्रेरी प्योरिटी होगी गांव के लिए, बनाने की कोशिश करूंगा। मैं श्योर नहीं है बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, सरकार से अगर हमको फंडिंग मिलती है या किसी टाइप का कोई भी पैसा हमको किसी भी टाइप जगह से आता है तो मेरी प्योरिटी लाइब्रेरी की तरफ भी होगी।
0: चलिए सुनो जी, एक बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से फंडिंग आती है, सरकार की तरफ से फंडिंग आती है। अगर मान लीजिए आपको सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं आती है तो क्या आप 5 साल हाथ पर हाथ धरे?
1: सचिन जी, अगर हमको सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं आती है तो मैं लोगों के साथ कोऑपरेशन करूंगा, कोऑपरेटिव रहूंगा, अपनी तरफ से भी कुछ करने की कोशिश करूंगा जो भी मेरे से पॉसिबिलिटीज होंगी। अपने गांव के अच्छे भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी तरफ से भी बहुत सारी कोशिश ऐसी हैं जो करूंगा।
0: चलिए सोनू जी, आपने बहुत सारी बातें

0: है वो कहीं है, और आपको अपनी पंचायत को लेकर जो है वो बहुत प्यारी समझ है, आपका विजन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से लगा कि आपका विजन बहुत क्लियर है। होप सो, हमारी पूरी उम्मीद है कि आप जरूर जीत कर आए, और जिन बातों पर आपने गहन चर्चा की है उन बातों पर आप खरा भी उतरे। मैं सचिन कपूर आप सभी से लेता हूँ फिलहाल अलविदा। और सोनू जी, जाते जाते क्या गुहार जो है वो आप लगाना चाहते हैं नरवाना खास के लोगों के साथ?
1: सचिन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मेरे विचारों को आपने सुना है, और मैं अपनी नरवाना पंचायत के सभी लोगों से यही की आशा करता हूँ कि वो मुझे भारी मतों से जिताएं, और जो जो भी मेरे विचार हैं वो मैं करने की कोशिश करूँगा, करूँगा भी। और दूसरा, मुझे उनसे काफ़ी रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, प्यार भी बहुत सारे लोगों से मिल रहा है, तो आई होप सो कि मैं जीत ही जाऊँगा, कोशिश तो मेरी पूरी है।
0: चलिए जी, होप सो। सोनू जी, जो बातें आपने कही आप उस पर खरा उतरे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा अच्छा जो है वो अपनी पंचायत के लिए करें। मैं सचिन कपूर आप सभी से ले लेता हूँ अब अलविदा। चुनाव संवाद में मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ। नमस्ते धर्मशाला।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबूधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170919। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो कुंजन धर्मशाला तो ते मैं थोड़ी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदा ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करते रहो पंजाबी गीत।

श्रोताओ रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे

क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170910। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा।
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर सर।
14: चलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक तो पहले तो तुहां सारे जोई शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुहां सारे ही ठीक ठाक होने न कने अपने जेड़ा काम कारण से जरूर करा दे उन्हें न। तो श्रोतो कामकार दी अहां गल कीती तो कामकार थोड़ा अगर अहां मौसम दी और अपनी जेड़ा नज़र है से लगा दे न या मौसम दे अनुसार अहां अपनी जेड़ा काम मन से कर दे न तो सबसे अच्छी गल है। जिस प्रकार मौसम बनया है या गर्मी दी अहां गल करन तो बाहर जेड़ा है से बड़ी प्यारी जेड़ा धूप ऐसे खिली हुआ है कने मौसम भी अपना जेड़ा बदलाव है से समय अनुसार लै दा है। तो अजकने मौसम दी अहां गल करन तो जेड़ा अजकना मौसम जेड़ा है से रहने वाला है से जरूर तुहां तक पहुँचा दे न। अज दा जेड़ा अधिकतम तापमान है से वह 3 डिग्री सेल्सियस कने जेड़ा राती दा तापमान जेड़ा रहने वाला है न्यूनतम से वह 16 डिग्री सेल्सियस तक जेड़ा रहने दा अनुमान जेड़ा है से जताया है। कने बारिश दी अगर हाँ संभावना जतांदे न तो से केवल 15% जेड़ा है से रहने वाली है पर मुख्य तौर पर जेड़ा मौसम है से साफ है। कने गर्मी दा मौसम है तो गर्मी दे मौसम च अहां जो अपना जेड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने दी जरूरत होंदी। तो सारे जो ही पता है कि मौसम दे अनुसार चलना अहां वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। ये मौसम जेड़ा है से अहां दी तबीयत जेड़ा अहां दी तबीयत है उस जो बिगाड़ींदा है। तो तबीयत जेड़ा है से अपनी अगर अहां ठीक रखना चाहते न तो थोड़ा दिया मौसम दे अनुसार अहां अगर अपना जेड़ा खान पान है से सही रख देना या अपना जेड़ा बाकी काम है से मौसम दे अनुसार कर देना या गर्मी च अहां ज़्यादा जेड़ा है काम ना कर देना। कने इस टाइम दोपहर दे जेड़ा है से 2:04 होई हैं कने तुहां सारे जो ही पता है कि इस टाइम जेड़ा धूप है से बड़ी तिखी वाली है तो अपना जेड़ा ख्याल है से तुहां रखना है। कने अहां भी तुहांदा जेड़ा ख्याल है से रख देना कने शुरुआत जेड़ा है से अहां कर देना अपने कार्यक्रम दी इस प्यारे दे गीत कने। तुहां सारी इस गीत जो इंजॉय करा कने फिर ते अहां अपनी जेड़ा बाकी दियां गल्लां न से तुहां तक पहुंचान देन। चल देन कर देन अपने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीत कने।

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत। इसे ही शुरुआत करने हाँ फिर ते अपनी जिड़ा गल बात है से तुहां तक ले करी वापिस आई हो न तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जरूर जुड़ी सकते कने हम सफर जिड़े से जरूर बनी सकते। हम सफर बनने वास्ते इस कार्यक्रम दा जिड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो नंबर जिड़ा है से भी तुहां तक पहुँचाइंदे न फिर ही तुहां इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते कने अहां कने गल बात जिड़ा है से जरूर करी सकते। तो नंबर है 701-8117091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो श्रोताओ मौसम दी जिड़ा जानकारी है या मौसम दा जिड़ा तापमान है से यहाँ जरूर तुहां तक पहुँचाया कने जिड़ा गर्मी दा मौसम है या गर्मी दा जिड़ा एहसास है से कुछ ज़्यादा है तो अपना जिड़ा ख्याल है से यहाँ जो ज़्यादा रखने दी जरूरत है। मंगलवार दी अगर अहाँ गल करिए पिछले दिन दी अगर अहाँ गल करन तो कांगड़ा कुल्लू सोलन जिला च जिड़े से दोपहर दी जिड़ा टाइम जिड़े से हीट वेव्स जिड़े से अहाँ जो दिखने जो मिलियाँ तो मौसम दे अनुसार जिड़े से तुहां चलना है। वैसे भी अहाँ दे जिड़ा किसान हैं जिड़ा खेती बाड़ी कर देन से हमेशा ये सोची करी चल देन कि पहले अहाँ अपना जिड़ा काम में से करी लैन देन चाहे से गर्मी है चाहे से ठंड है फिर भी अहाँ अपना जिड़ा काम में से करते रहन देन। तो थोड़ा दिया अपना भी जिड़ा ख्याल है से रखना है काम तो हाँ ताई करी पाते न जालू तो हम जिड़ा स्वास्थ्य है ना से ठीक रहता है। वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है गर्मी चा थोड़ा अपना जिड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने दी जरूरत होंगी। कर अगर अहाँ पुराने समय दियाँ कुछ गल्ला न तिना जो तुहां तक पहुँचाते न तो तुहां भी जरूर जिड़े से खुश होंगे न कि नहीं पुराने समय दियाँ गल्ला जिड़ा न पुराने समय दियाँ जिड़ा अहाँ गल्ला ताज़ा कर दे न ज़्यादातर अहाँ क्या कर दे जिड़ा घड़े दा पानी है या अहाँ दे जिड़ा बुजुर्ग हैं से अहाँ जो हमेशा यही बोलते न कि जिड़ा घड़े दा पानी है से अहाँ वास्ते सबसे बेस्ट है अहाँ दे स्वास्थ्य वास्ते। तो सारे जो पता है जल तुह अपने घर जाते न या अपने आसपास या कुछ जिड़े से तुह ट्रैवल करा दे होंगे तो हमेशा अहाँ ही बोलते न कि पानी जिड़े से अपने अपनी सोगी रखना जिड़े से अहाँ वास्ते ज़्यादा जरूरी है। गर्मियों के मौसम च वैसे भी पानी समय समय अनुसार पीना अहाँ वास्ते ज़्यादा जरूरी है कने जिड़ा घड़े का पानी है से सबसे बेस्ट है। अगर तुह अपने घर है घड़ा नहीं रखे है तो जल्दी जल्दी फटाफट जिड़ा से घड़ा रखी लिया कने इस घड़े का जिड़ा पानी है ना से पी करी दिखा। फ्रिज अगे से बिल्कुल जिड़ा पानी है ना तो हाँ सोचा दे होने कि नहीं अहाँ फ्रिज रखिया कूलर रखिया तिदा पानी जिड़ा से अहाँ वास्ते सबसे बेस्ट है। पर तो हाँ ये नहीं सोचते कि अगर अहाँ काम गए हो ना या हाँ बाजार गए हो ना या हाँ कुछ भी जिड़े से कोई भी काम में अहाँ दा करी करी अहाँ अपने घर आओ देना कने एकदम जिड़े से अहाँ फ्रिज का पानी पी देना या कूलर का पानी पी देना तो से अहाँ दी सेहत जो कुछ ना कुछ नुकसान जिड़े से ज़रूर दिंदा है। बेशक से अहाँ जो ठंडक दिंदा है या अहाँ जो अच्छा महसूस करवाद है कने उस टाइम अहाँ हमेशा यही सोचते न कि बड़ी ज़्यादा गर्मी है तो हाँ जो जड़े से ठंडा ठंडा पानी जड़े से पीने जो मिलियाँ तो चाहे से बर्फ़ वाला पानी है तो हाँ से भी पीना पसंद कर दे कने कुछ ना कुछ अपनी सेहत जो जड़े से नुकसान दिन दे। अगर गल अहाँ कन घड़े दी पानी दी तो कुछ ना कुछ से पानी जड़े से अगर अहाँ ठंडा ठंडा पानी पीते न तो से अहाँ दी सेहत वास्ते बिल्कुल अच्छा है कने फायदेमंद है। तो तुह जो पुरानी गल्ला फिर ते जिड़ा ताज़ा अहाँ करवाई दी न कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम च अहाँ कने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गल बात जिड़ा से जरूर करी सकते। तो अहाँ दे जिड़ा श्रोता न तिना अहाँ तक पहुँचा फरमाइश जिड़ा से पहुँचाई हुए तो तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाते न तो ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना ना जिड़े सभी तुह तक पहुँचाते न
पर थोड़ा देया मोबाइल फोन दी और अपनी जेड़ा नज़र है से लगान देने कि ये फरमाइश अहां जो अहां तक किस प्रकार जेड़े से पहुंची हो है। ये फरमाइश अहां तक पहुंची हो है व्हाट्सएप के माध्यम ने कने सुनील जी दी फरमाइश है से रहने वाले न कोठियां जलोट ते तिना जो मेरी ओर ते नमस्ते कने तिना दी जेड़ा फरमाइश है से तिना तक पहुँचान दे न कने तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे आप ना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

આ બોલા દિન રેડિયો ગુંજન ધરમશાલા તે કને તો હા સારી કાર્યક્રમ સુના દેન આપની રેડિયો તો શશિ કને તો હા સારી ભી ઇસ કાર્યક્રમ દે સફર કને જુડી સકતે કને હા કને ગાલબાત જીડે સે જરૂર કરી સકતે ભી મઈ 2026 દી અગર અહાં ગાલ કરીએ આજકણા જેડા દિન ને સે તો હા વાસ્તે ભી બહેતર ખાસ હે કને बुधवार का ये दिन है कने अहाँ जिड़े से अपने सारे काम जिड़ा न सोचे होंगे कने तिना कम्मा जो अहाँ करते भी हैं न वैसे तो जितने भी अहाँ काम सोचते न अगर अहाँ उन्हें जो समय अनुसार करते न तो अहाँ सारे काम जिड़े से कर ही पाते न कने अहाँ जिड़ा बार बार गर्मी वाले मौसम च किस प्रकार अहाँ अपना जिड़ा ख्याल है से रखी सकते न से गलबात अहाँ करा दे न कने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अपनिया जेड़ा गल्ला न से जरूर अहाँ कन्ने सांझा करी सकते तो गल अहाँ लगाई थी कि अहाँ एकदम जेड़े से बारह ते आते न या अहाँ कुथी घूमना फिरना गए आते न तो एकदम अहाँ जेड़े से फ्रिज का पानी जेड़े से पीना शुरू हो जाते न या फैन की अहाँ गल करिए अहाँ ए सी की गल करिए अहाँ ए सी की हवा जेड़े से लेना शुरू हो जाते न या फैन की हवा जेड़े से लेना जेड़े से शुरू हो जाते न तो ये हवा भी कुथी ना कुथी अहाँ जो एकदम जेड़े से नुकसान जेड़े से जरूर दिंदी है वैसे तो अहाँ ये सोचते न कि अहाँ जो राहत जेड़े से मिला दी या अहाँ एकदम कुछ यही सोचते कि ठंडा ठंडा अहाँ कुछ खान तो अहाँ जेड़े से ठंडा ठंडा खाने के चक्कर च अपनी सेहत जो या अपने गले जो या कुछ ना कुछ अहाँ नुकसान जेड़े से जरूर पहुँचाते न कने अगर अहाँ कच्चे मकान की गल करिए क्योंकि पुरानी यादा अहाँ जो हमेशा कुछ ना कुछ याद कराई करी जानिया न या अहाँ जो उस दौर की ओर जरूर ले करी जानिया न क्योंकि बेशक अहाँ अपनी जिंदगी च सफलता भी हासिल करा दे जागरूक भी हो दे जागरूक होना भी अहाँ वास्ते जरूरी है पर कच्चे जेड़ा घर हैं तिना दी अलग ही जेड़ा अहमियत अहाँ दे जीवन च होंदी थी कने अगर अहाँ उन्हें दी गल कर दे न अगर कुथी कुथी कच्चे मकान हैं तो सह तो हमेशा यही सोचा दे उन्हें ने कि नहीं गर्मी दे मौसम च सिर्फ हाँ जो कोई कच्चे मकान च भेजी दें या तिथु रहने वास्ते बोली दें तो सबसे बेस्ट है क्योंकि तिना दी एक खासियत है कि से गर्मी दे मौसम च इतने ज़्यादा ठंडे होंदे कि अहाँ जो ना पंखे दी जरूरत पौंदी ना अहाँ जो एसी दी जेड़ा जरूरत है से पौंदी तो दिखा यादा जेड़न से सबसे खूबसूरत हैं तो हाँ सारे जो भी जरूर यादा तो हाँ जेड़े से याद करा दे उन्हें न कने अपना जेड़ा बचपन है तो हाँ कच्चे मकान च गुजारे होने तो तुम जो भी याद होना याद जेड़े से वो दौना है कि नहीं अहाँ भी जेड़े से तालू एसी या पंखे दी जेड़ा हवा ऐसे नहीं खाते थे कने कच्चे मकान च अपना जेड़ा जीवन है से बिताते थे कने उस टाइम एक ही दुए अंदर प्यार भावना जेड़े से अहाँ जो दिखने जो मिलती थी पर आजकना जेड़ा टाइम है ना से अहाँ ज़्यादातर कुथु लगा दे से ज़्यादातर अहाँ अपना मोबाइल फोन च अहाँ सोशल मीडिया पर लगा दे कोई भी काम है या कुछ भी है हाँ अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर दे दे या चलो हर किसी की अपनी अपनी जेड़ा ख्वाहिशा होंदियाँ अपनी अपनी जेड़ा इच्छा नस है होंदियाँ सभी जरूरी है पर अगर तुहां अच्छा काम कर दे न तो बड़ी अच्छी गल है कि नहीं तुहां अच्छा काम करा दे कने सोशल मीडिया पर कुछ जेड़ा से तुहां सिखा दे पर अगर अहाँ गलत दिशा दी ओर जा दे न या अपना जेड़ा समय है उसका दुरुपयोग करा देना या उस जो सही तरीके ने नी दिखा देना क्योंकि समय जेड़े से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है तो वह सारे जो ही पता है कने समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कने अहाँ गल करनी है अपनी प्रकृति दी प्रकृति जेड़े से अहाँ दे वास्ते कितनी ज़्यादा जरूरी है अगर अहाँ अपने पेड़ पौद्यां दी गल करते न कल भी अहाँ कार्यक्रम च गलबात की थी कि पेड़ पौधे जेड़ा से अहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न
पर अहाँ जो समझ कालू होंदा जालू अहाँ जो जरूरत होंदी, जालू अहाँ जो जरूरत नहीं होंदी तालू अहाँ जो वह चीज़ दा जेड़ा समझ है या अहाँ ये बोली सकते कि अहाँ वह चीज़ दा जेड़ा फायदा है से नहीं लैंदे न, उल्टा उस चीज़ जो जेड़ा है से नुकसान दिंदे न, चाहे से अहाँ दे जंगल न, चाहे से अहाँ दे पेड़ पौधे न, चाहे से अहाँ दे नदी नाले न, या अहाँ अपने पहाड़न की गल कर दे न, हर चीज़ का अहाँ दे जीवन च बड़ा ज़्यादा महत्व है। जंगलों की अहाँ गल कर तो कुछ ना कुछ गर्मियों का मौसम है, कने वैसे भी गर्मियों के मौसम च अगर अहाँ जंगलों च अग लगाते न तो से सबसे बड़ी अहाँ की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जंगल जेड़ा न जितू भी जीव जंतु जेड़ा से होंगे न, कने तिना का अगर ख्याल अहाँ नहीं रखते न तो और कौन कौन जेड़ा से रखी सकता, तो इदे ऊपर भी सोच विचार करना अहाँ वास्ते जरूरी है। तो हाँ जरूर सोच विचार करा, कने अहाँ भी तो हाँ वास्ते जेड़ा सोच विचार है से करा देन, तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र कन्ने जुड़िया। सफ़र च समय जेड़ा है से होई है 2:25, समय जेड़ा है से अपना हमेशा चलिया रहिंदा पर समय के अनुसार चलना अहाँ दा काम है। नंबर तो तक पहुँचाइंदे न, नंबर है 7081811709001, तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा, चल दे न सुन दे न अगली फरमाइश। तो सारे भी इंजॉय करा, कने नहीं सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: गन चैसे बड़े न हर कुसी दा ख्याल रखना जड़े से ज़्यादा जरूरी है। चलो हाँ अपना ख्याल रखते न ताई हाँ बाकी जड़ा घरे दे सदस्य न तिना दा जड़ा ख्याल है से रखी पाते न। अपनी गलबात जो इतों ही रोकते न आंदे जड़ा श्रोता न तिना कन्नै करदे न गलबात। हेलो
1: नमस्कार जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: हाँ जी ठीक ठाक। तू सुना, गर्मी गर्मी कदियाँ ने।
0: जी? गर्मियां तो ठीक ठाक ही हैं जी।
1: हाँ जी
0: जी तो हाँ अपना जेड़ा परिचय है कुथों दे रहने वाले ने से जरूर दसी दिया जी।
1: मेरा नाम तारा चंद है, मैं दाड़ी का रहने वाला जी।
0: जी ता दाड़ी दे हाल चाल क्या जी, मौसम क्या बोला था इस टाइम दाड़ी दा?
1: मौसम तो इस टाइम तो बड़ा बढ़िया, गर्मी पई है, दूसरे टाइम में तो कोई पता नहीं लगा आजकल।
0: जी जी जी धूप
1: दूसरे टाइम
0: जरा
1: में
0: सा
1: कोई।
0: है, ठीक ठाक लगी हो ना जी?
1: हाँ जी तो बताओ, ठीक पई है? बहुत गर्मी पई है।
0: जी तो पुरानियां यादा थोड़ी दियां ताजा करना जरूरी है ना जी यहाँ वास्ते।
1: हाँ जी हाँ जी। हाँ ये आदा की दे दिन होते स्कूले ते होना कना सीधे
0: जी
1: खड्डा नहाना चली जाना, खड्डे ते नहा दे क्या
0: जी
1: करा है? नहीं
0: जी
1: सर याद ना वही याद ना और
0: जी
1: उन तार से पानी भी नहीं रहे थे नोड़े दिल के उनका दिखने दिल नहीं करा थे ना पानी ही इतना
0: जी जी
1: प्रदूषित तो ये पानी
0: जी
1: सारे।
0: बड़ा ज्यादा प्रदूषित हो या नदी नाले
1: हाँ
0: जिड़न
1: जी
0: से
1: हाँ
0: बड़े ज्यादा
1: जी
0: प्रदूषित हो ही ना जी,
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी
0: वह चीज दी यहाँ कदर नहीं करा देना जी।
1: बिल्कुल नहीं जी कर जरा नहीं करा दे की।
0: जी जी हूँ अगर हाँ गल करना ता जंगला च भी जड़े ऐसे तो हाँ दिखा दे होने ना कि आग जड़े ऐसे लगाई दे दे या खुद
1: हाँ
0: लगा
1: जी
0: नहीं
1: हाँ
0: से
1: जी
0: कोई पता नहीं है ना जी।
1: अग लगाने वाले आपको लगने यहाँ तो है लगा रहे थे जी
0: जी
1: कहा चाहिए खरा किन्ने पक्षी किन्ने बेचारे
0: जी
1: कीड़े मकोड़े मरी जा रहे
0: जी
1: हैं। अब कोई ये नहीं है उन्हें दिया क्या लंबे दिन
0: जी
1: धर्म नहीं इंसान से
0: प्यार भावना जिड़े से बिल्कुल खत्म
1: खत्म
0: है
1: खत्म हुई है जी सब
0: जी।
1: कुछ।
0: तो घड़े दी यहाँ गाल करा दे थे तो तुहां भी घड़ा घरे रखिया कि नहीं रखिया?
1: रखे जी घड़ा देसी फ्रिज। हाँ
0: जी जी देसी फ्रिज
1: जी हाँ जी देसी फ्रिज
0: जी सही है बिल्कुल, बड़ा अच्छा तुहां जिड़ा ना दिता कि देसी फ्रिज है आंदा से
1: जी हाँ जी
0: जी। कने अमुना हाँ दिखा देना कि गैस सिलेंडर दी भी जिड़ा से बड़ी ज्यादा दिक्कत हो दी ना जी।
1: हाँ जी किल्लत आई है जी, गैस नहीं मिला थी कुछ
0: जी नहीं मिला दी
1: नहीं।
0: ता हाँ निर्भर हुई हो ना जी गैसा परी वैसे ता
1: हाँ एक ही चीज़ पर निर्भर हो ये ना, बस बोले भांडे काले हो जाते हों
0: जी
1: वो हों बस गैस चाहिए तो
0: जी पर
1: पैसा पहले खत्म हो
0: जी
1: ये।
0: जी पर हाँ
1: हाँ
0: जो अपने बुजुर्गों दे थोड़ी देर सीख ता लेना चाहिए ना जी।
1: तो जी चूल्हा भी रखे हाँ तो चूल्हा भी जलाई देंगे कने गैस थोड़ी हूँ घट करती है जी, कोई आया गया चाह चू बनानी ताई
0: जी
1: कने चूल्हा जगाओ के लकड़ी पे बतेरी है बालन ता तूंदा होंगे छोटा मोटा पेड़ा राड़ा होंगे।
0: जी जी
1: हाँ जी
0: कने जेड़ा
1: किसने
0: बुजुर्ग हैं से ज्यादातर यही बोलते ना कि जेड़ा चुल्ली दा बनिया खाना जेड़ा हाँ चुल्ली पर
1: हाँ
0: बनाते ना से तिसदा जेड़ा टेस्ट है से अलग ही होंदा
1: जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी
0: जी।
1: सही
0: ता मतलब हाँ एक ही चीज पर निर्भर हो जाते ना जी
1: हाँ जी
0: जी
1: गैसा बने कहीं के नहीं हो ये निर्भरता लोग बोलते ना पता ही नहीं कुछ भी जमाना
0: जी
1: कुछ बुझे

0: हाँ खुद मतलब समझते नहीं इंसान जड़े से खुद जो ही भगवान समझना शुरू करींदा ना जी,
1: हाँ
0: पर सबसे गलत चीज है ना जी।
1: जी
0: प्रकृति दी देन है, हाँ वास्ते हर देन है ना
1: हाँ
0: जी।
1: जी
0: अगर हाँ
1: सब
0: वर
1: कुछ प्रकृति
0: जी जी
1: प्रकृति दिया दी सब कुछ समझो, पर उसका इस्तेमाल नहीं सही ढंग ने कराई ना।
0: जी नहीं करा दे। अगर उन्हें दी अगर जेड़ा सीजनल अनुसार सब्जियां दी गाल करिए तो लस्याड़े दी यहाँ गाल करना तो सभी प्रकृति दी देन है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: लुंगड़ू होई आती दी अगर हाँ गाल करना तो अगर हाँ पहाड़े गोई आंदे ना तो हाँ
1: हाँ
0: लुंगड़ू
1: जी हाँ
0: मिली
1: जी
0: आंदा है ना जी।
1: आलू सेजन दी सारियां सब्जियां टेस्ट होंगी है जी। आजकल तो 12 महीने चल पे सारियां सब्जियां, कोई
0: जी
1: टेस्ट
0: बिल्कुल
1: नहीं है, पर देना टेस्ट नहीं है जेडी सीजने वाली है सही बड़ी बढ़िया
0: टेस्टी
1: सब्जी है।
0: टेस्ट है
1: हाँ जी हाँ जी
0: से तहाँ दवाइयाँ ने या इंजेक्शन ने जड़े से है, चाहे बैंगन छोटा दे है उस जो हाँ इंजेक्शन ला दे है बड़ा हो जाता
1: पर सह गल है ना सह बैंगन तो बड़ा हो जाता, इंसान तो खत्म हो जाता ना
0: जी। तो
1: फिर
0: सह आंधी
1: जहर
0: सो
1: जहर जावे ना अंदर,
0: जी
1: जहर दी डोज ज्यादा अपनी है।
0: तन तो इतनी ज्यादा बीमारियां चिड़न से यहाँ जो
1: हाँ
0: लगा दिया ना जी
1: जी धीमी आत्महत्या हो रही ना फिर
0: जी जी
1: धीमी
0: जी
1: आत्महत्या ना आप ही करा दे अपनी।
0: हाँ खुद दी गलती जो फिर एक्सेप्ट भी नहीं
1: हाँ
0: करते ना जी।
1: जी ना बिल्कुल नहीं मानते
0: जी हर
1: जी
0: कुसी दे घर है भीकल है, ठीक है भीकल होना भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी
0: सभी
1: हाँ जी
0: अच्छी गल है
1: बिल्कुल
0: कि चलो जालू जरूर तहाँ जो पौंदी है तहाँ जल्दी जल्दी अपना जेड़ा व्हीकल ऐसे उठान देना कने चली पौंदे ना।
1: बिल्कुल जी
0: पर
1: सब
0: हाँ कुथी
1: जरूरी
0: भी ट्रैवल करा दे ना कने अगर हाँ थोड़ा देर भी पैदल चलना हो तहाँ सोच देन 100 बार कि नहीं पहले हाँ बस ची जेड़ा ऐसे चल देना या अपने व्हीकल ची जेड़ा ऐसे ट्रैवल कर देना।
1: आता ही तो आजकल डॉक्टर सलाह दे दे सवेरे शाम सैर करो, क्योंकि अंगने दे बीच ही गड़िया बहना अंगने च उतरी जाना बस, जरा शरीर लाना नहीं कुछ नहीं
0: जी जी
1: बस दिन रामी ना खेती जमीन च कमा दे अजकल ना कुछ
0: जी जी तो फिर
1: नहीं बीमारी
0: बीमारियां तो खुद ब खुद तैयार करा देना। हाँ
1: वाली। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
0: जी
1: जी
0: जी ता तारा जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी
1: तो हाँ सुनाई दिया भला भी है मने जरा हाड़ में नहीं है धूपा छतरी या ताली ले।
0: जी जी हर गीते दी अलग ही पहचान है ना जी
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी साल
0: जी
1: लेते कि जेठे का महीना भी होता ना जी।
0: जी जी ये जेठे दा महीना ही तले गया
1: हाँ जी ये जेठे महीना ही तो हाँ
0: जी
1: गाना सुनाए दिया बड़ी
0: जी जरूर जी
1: मेहरबानी
0: जी तो
1: धन्यवाद।
0: हंदा भी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी जी
1: ठीक
0: ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगली जिड़ा श्रोता है ना सब यहाँ करने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना करने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
1: धन्यवाद
0: जी? तो
1: धन्यवाद
0: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां ठीक ठाक है ना
1: ठीक
0: जी? क्या काम कार तुहां लगे या क्या करा दे?
1: है ना। हाँ जी बिल्कुल सुना है यहाँ प्रोग्राम में

0: कदर करते रहे वो करना पौने।
1: जी सही ना जी, यहाँ हर चीज़ दी कदर करना भुलियान दे, पर वक्त तहां जो कदर करना चाहिए ऐसे सिखाइंदा फिरी ते।
0: बड़ा अच्छा है,
1: जी
0: सोचा था गैस बंद ही हो जाए, बिल्कुल तो बच गया। चलो
1: जी जी
0: खाना भी टेस्टी बनता ना,
1: जी
0: चुल्ली पर जगह खाना बनता ना, फिर टेस्टी बनता, फुलके भी बढ़िया बनने, सब्जियां
1: जी
0: बढ़िया
1: जी
0: बननी।
1: जी तो
0: हाँ जी,
1: मेघना जी और नोईता जी दाढ़ी दी।
0: बहुत बढ़िया दाढ़ी भी ये चल रहा, लेकिन 23 तारीख निकला अब जल्द से क्या पता कौन लिया बंदा है। हाँ
1: जी इंतजार है तो जो ना जी 31 तरीका दा।
0: ना बस 50 वाले तो खड़ा करिए ना, होगा
1: जी चलो उम्मीदवार अच्छा चुने होना था, उम्मीदवार है अच्छा ही काम करना ना जी।
0: क्या थोड़े दिन वास्ते होगा
1: जी जी चलो अब हर
0: यार,
1: जी
0: लोग मिल जाए ना,
1: जी जी
0: तब गलबात करना भी छोड़ दे रही।
1: जी
0: हाँ कहना जाएंगे इधर से निकलना, अभी मेरे यहाँ टाइम नहीं है।
1: जी जी
0: चलो हम मंडे पे 100 100% कोई नहीं कर सकता, तो 120% का काम करना चाहिए।
1: जी जी करना ही चाहिए।
0: हाँ
1: जी तो मेघना जी आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी।
0: करना कमाइया खरिया सोटिया ते खानिया दो रोटियां।
1: जी जी जरूर, ये भजन तुह तक पहुंचा दें जी, चुनने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत
1: जी
0: धन्यवाद।
1: दर्शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं, कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते हैं।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे सुनिया ये प्यारा देया गीत प्यारी देई फरमाइश। तो श्रोताओं इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने कने तिना दा नाव है अनीश जी, अनिल जी, लेखराज जी कने सरैने वाले ने स्कोते तिना तक अहाँ ये गीत ये फरमाइश अहाँ पहुँचाई कने तुहां सारिया भी इंजॉय की। कने गल बात आंदी चली हुए कि गर्मियों के मौसम च हाँ अपना जिहड़ा ख्याल है से किस प्रकार रखन। दर्शो तो अपना जिहड़ा ख्याल है से यहाँ जो ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी, मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते ज़्यादा जरूरी है। कने थोड़ा जिहा कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाते न क्योंकि समय जिहड़ा है से यहाँ थोड़ा जिहा है। कने फरमाइशां का जिहड़ा दौर है से यहाँ ज़्यादा है। चलते न सुन देना इस प्यारी दिया फरमाइशा जो तुम सारे भी इंजॉय करा।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शो तो हाँ सारे ये गीत इंजॉय कीता कने इस गीत की फरमाइश हाँ जो आई हो वे दाड़ी ते कने तिना दा नावे तारा चंद तिना तक हाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय कीते दर्शो तो समय पुराने समय की अगर अहाँ गल करते न कने अज कने समय की अहाँ गल कर तो कुथे ना कुथे बड़ा ज़्यादा जिहड़ा बदलाव है से अहाँ जो दिखने जो मिलता है। बदलाव होना जरूरी भी है पर पुराने समय दिया जिहड़ा कुछ गल न से अहाँ जो हमेशा बार बार जिहड़ा याद है से जरूर आउंदियां न। जिहड़ा मिट्टी का घड़ा है से भी अहाँ जो बार बार याद आंदा है। जिहड़ा अहाँ दे कच्चे मकान थे से भी अहाँ जो याद आंदे न। कने एक ही दुए अंदर प्यार भावना जिहड़ा है से हमेशा अहाँ जो दिखने जो मिलती थी। उन्हें दी अगर अहाँ गल करन तो बच्चे भी जिहड़ा है से मोबाइल फोन च बिजी हैं तिना जो खेलने वास्ते जिहड़ा है से समय नहीं है। कने पुराने समय दियाँ जिहड़ा याद न तिना जो हाँ ताज़ा करते न तां पेड़ दी जिहड़ा छाँव है या आम दा जिहड़ा पेड़ है वैसे भी आम दा जिहड़ा सीजन है से शुरू होने वाला है कने आम भी जिहड़ा है से धीरे धीरे जिहड़ा है से बड़े होते न। तां तुहां जो भी जिहड़ा याद न से जरूर आई होनियां न कि नहीं अहां भी इस प्रकार अपना जिहड़ा बचपन है से इंजॉय करते थे खेल कूद जिहड़ा है से करते थे कने अपना जिहड़ा बचपन है से अहाँ खूब जिहड़ा से मस्ती भरा बनाते थे। पर आज के दौर की अहाँ गल करिए बच्चों का जिहड़ा बचपन है से सिर्फ मोबाइल तक सीमित हुई आ सारा जिहड़ा तिना दा ध्यान है से सिर्फ मोबाइल फोन तक है कि सोशल मीडिया पर जिहड़ा से अपना ज़्यादा समय दे देन कने वीडियो गेम्स या गेम्स पर जिहड़ा से ज़्यादा जिहड़ा अपना ध्यान है से लगा देन तो कुथे ना कुथे हाँ अपना जिहड़ा बचपन है उस जो भी बिल्कुल अहाँ फोने तक ही जिहड़ा से सीमित करी दे है। श्रोताओ फिर ते अहाँ थोड़ा दे अग्गे बढ़ते न कने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न कने समय भी हाल सिर्फ 5 मिनट बचियां न तो सुनते नि सा प्यारी दिया फरमाइश है जो तुहां सारे भी इंजॉय करा कने इन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शो तो इस गीत की फरमाइश अहाँ जो आई हुए दाड़ी ते कने तिना दा नावे मेघनाथ जी तक अहाँ ये भजन पहुँचा

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। श्रोताओ तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर है से तो हाँ तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो तुहां सारे ही अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा कने हमेशा बुजुर्गों दा जेड़ा ध्यान है सभी रखना हाँ वास्ते ज़्यादा जरूरी है। कने अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701817018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए है, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसके।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: ओह नो।
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है, अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुटकी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के 5 आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर,
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया।

0: वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
1: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, और मुझे दो दिन में वापस चाहिए।
0: दो दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
1: श्योर
0: श्योर सर।
2: हेलो बेबी चाय।
3: थैंक यू।
2: आपने आज की न्यूज सुनी?
3: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
2: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
4: ओह नो।
3: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
2: पता,
3: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
2: और क्या।
5: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

0: नमस्कार श्रोताओं, एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और आऊँ तो सोगी तुम अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर हाँ बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रहा हार्दिक अभिनंदन हाँ क्या हाल चाल है श्रोतो तुंदे उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल खरे भुने तो सब अपने अपने घरे मस्त भुने इन और बहुत सारी जानकारी ज्ञान सो लेकर यह है हाजिर हुआ तुंदे वीडियो सेट में भैया कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं श्रोतो और सभी पहले तो है तू पता कि धर्मशाला रा जो मौसम आटे रे बारे गलबात कर देना और इतों बाद शो तो और भी अन्य जानकारी हैं जो आज तू सोगे सो शेयर करनी तो सब असोगे कनेक्ट हो सकदन कॉल करी सकदन अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते 7018879 पर नंबर अक मुके फिर शेयर करनो हाँ 7018879 पर चलिए चल दें श्रोतों और कार्यक्रम मन जिंदा पहले श्रोता सोगी कनेक्टेड हिन तो इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहा है एहसास की असो धर्मशाला वाले बच्चू करता हा और इन सियाने सोचूं तो भूने ने कि यार यह तो जवानी की असो खरी कट रही थी असू तना पखे री जरूरत पी थी ए सी तो मुझे लगता सियाने पता बना बुना कि ए सी भी कोई चीज़ बुन दिया और क्या यार जिंदगी कितनी प्यारी थी ना कितनी शुद्ध जिंदगी थी यार और इनकी जिंदगी क्या यदि अंदर प्रदूषण कचरा चौमिन मोमो बर्गर पिज़्ज़ा मैदा ये सब भर रहा इन सियाने भी जिंदगियाँ क्या खूब क्या मज़ेदार जिंदगी थी वाकई में यार कमाल थी काश आऊँ भी बुढ़ा बुंदा मनु बल्द क्या है जवान रेंदे तो आऊँ बोलूँ काश आऊँ भी बुढ़ा बुंदा कजो कि सो दौर कुछ और थो ना यार शोतो सो दौर कुछ और थो सो माहौल कुछ और थो इस समय की यार सो गल करूँ तो 25 डिग्री सेल्सियस रे आस पास हा मौसम क्लाइमेट जैसी अंग्रेजी में बोलते ने है 25 डिग्री सेल्सियस रे आस पास हा ह्यूमिडिटी की गल करिए शोतो तो 3% ह्यूमिडिटी हा बहरहाल आगाज कर लेंदे ने है भी आगाज जरूरी है कार्यक्रम रा आगाज कर देना और फिर आगाज जरूर करते लेकिन इन श्रोता गणा सूगी कनेक्टेड है नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक न
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी तुसा सर जी
0: बढ़िया जी थोड़ा आशीर्वाद है थोड़ा प्यार है अहां भी ठीक
1: ऊपर आले दा आशीर्वाद जाना चाहिए सर जी
0: चलिए ऊपर आले दा तो है ही ऐसा तो हां ब्यागा ले लेंदे ना
1: हां जी सर जी
0: पर थोड़ा भी चाहिए ना जी
1: हां जी सर जी
0: हां जी
1: गर्मी तो काफी है सर जी
0: बहुत ज्यादा
1: गर्मी बुरा हाल हो गया सर जी गर्मी
0: हां जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਬੋਣੇ ਹਨ ਜੀ
1: ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਰ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਠੰਡ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਰ ਜੀ
0: ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੱਖਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ
0: ਚਲੀ ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੁੰਡਣਾ ਗੀਤ ਹੁਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਹੈ
1: ਇਸ਼ਾਂਤ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਿਓ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ
0: ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ
1: सुखी गए बाग बगीचे
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले
1: हाँ जी धन्यवाद सर जी नमस्ते जी
0: धन्यवाद जी नमस्कार
1: नमस्कार सर जी
0: आई श्रोतों कार्यक्रम मंच इंदे बहुत सारे श्रोतक न सो जुड़ने हैं तुंदा सभी रा मौके फिर बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है फरमाइश दौर की सो जरूर पूरा करना है आइया फिलहाल लेकर चलते तू सभी जो आगाज री और जो कि कार्यक्रम रा आगाज किया सो बुना चिंता शोतो और आगाज तो बाद फिर तुंदे सभी री फरमाइश अगन सो सु जरूर पूरी करनी है बहरहाल आइया हुनंदन तू सु गीत तुंदे अपने वीडियो सेट में बनी रहा 5 बजे तक अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर सोगी

श्रोतो एफ एम एंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी टी उनको रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हैं। आइए श्रोतों कार्यक्रम जो होगा बढ़न दे हिन और बहुत सारी जानकारी तो सोगी शेयर करनी है। श्रोतों शिमला में पेट्रोल 99.27 पुजेगो और डीजल 91.26 रुपये गया सो महंगा बचेगो। श्रोतों अके हफ्ते में दूजी बार की सो कीमता में बढ़ोतरी हुई है और मनु महंगाई भी और किया सो बड़ू कर देन महंगाई बढ़ने रहा डर किया सो मनु है वैसा ताऊ करता है। मनाली में कई पंपा में किया सो पेट्रोल डीजल री किल्लत मनु बच्चू कर देन परेशान और कुछ मनु शायद यह गल्ला रहा ज्ञात भी नहीं है कि अब तिनी तिनी स्थिति कि किनी किनी स्थिति अब आऊँ तो सुध सुकीने वाले हाँ। देश में अक्की हफ्ते में दूजी बार पेट्रोल डीजल री कीमता में बढ़ोतरी भोई है। श्रोतों इस बार 90 पैसे प्रति लीटर री बढ़ोतरी किया सो भोई है। इतों बाद शिमला में पेट्रोल 99.27 रुपये और डीजल 91.26 रुपये प्रति लीटर किया सो महंगा हुआ है। श्रोतों हमीरपुर रे सुजानपुर में भी पेट्रोल 98.27 डीजल 88.66 रुपये किया सो महंगा हुआ है। श्रोतों इस प्रकार होगी मंडी में ऊना में हर जगह गया सो थोड़ा थोड़ा महंगा गया सो हुआ हा। पेट्रोल डीजल री कीमता में बढ़ोतरी रा सीधा असर किया सो महंगाई पर पैना हा। श्रोतों इतों खाद वस्तुएं भी के खाद वस्तु क्या न त्यारी कीमता में भी बढ़ोतरी होने हा। राज्य में अगले महीने में गया सो सेब सीजन भी शुरू होने वाला है। श्रोतों इतों सेब री ढुलाई किया सो भी महंगे होने हा और नेचुरल दे बात है फिर सेब अपू अपने आप किया सो महंगे होने हिन भगवान पर बागवानों पर और असु ही है मन ऊपर किया सो सीधा असर किया सो पैना हा। श्रोतों महंगाई रहा प्रदेश भी सब थो बड़े और बद्दी भी बड़े इंदे प्रदेश भी सभी मोटे बद्दी रे ट्रक यूनियन 4 दिन पहले ही किया सो माल भाड़ा बढ़ाई चुक रहे हैं। श्रोतों आर्थिक संकट थों जो जो कर दे है प्रदेश सरकार कभी भी किया सो पेट्रोल डीजल पर अधिकतम 5 रुपये प्रति लीटर तक किया सो पूजी सकते हैं। जी बिल्कुल श्रोतों को जो कि प्रदेश सरकार पहले कर्जे किया सो डूब रहे हा और सो कदी भी किया सो 5 रुपये प्रति लीटर किया सो बढ़ाई सकते हैं डीजल पेट्रोल रे दाम। तो इस प्रकार भी कुछ नोई खबर के न सो ऐसे है तू होगी साझा करूँ करते हिन और लगातार करते भी रहना है। श्रोतों भैया लेकर ही चलते हैं तू सब भी जो फरमाइश रहा दौर की सो पूरा करते हिन। श्रोतों तो ये सब बन रहे इस समय वीडियो गुंजन धर्मशाला सोगी और कॉल कर सकते हैं जी 7018879 पर नंबर अक मौके फिर 7018879 पर कॉल करके अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। बहरहाल यह कर दिन फरमाइश रहा दौर पूरा बने रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सोगे गूंज अपने पन रहे।

श्रोता एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर तो ऐसा भी ट्यून कर रहा है समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर रतन अपना आर से वेड़ी जो कि तब वाकई माई जिंदगी है फटता देते या श्रोतो लेकिन बल्दे ने कभी भी अगर श्रोतों आँसू ही लगता कि जिंदगी आँसू होकर कुछ ज़्यादा खेलू कर देता निराश न बुना हताश न बुना जिंदगी खेलते भी तस योगे जो खिलाड़ी की आँसू बढ़िया बुंदा हा बहरहाल इन अगले श्रोता आँसू होगी कनेक्ट बुझ गया श्रोतों और इस प्रकार की जानकारी के अनुसार जरूर शेयर करनी ना इसी जो की श्रोतों अगली जानकारी भी शेयर कर दें। सुप्रीम कोर्ट है कि ऐसो खतरनाक और रैबीज संक्रमित आवारा कुत्ते जो कि ऐसो जान थो मारने रे अनुमति किया सो देते हा श्रोताओं ये पूरी जानकारी तू हो गया है जरूर बड़े महत्वपूर्ण फैसला किया सो

0: लियो हुआ सुप्रीम कोर्ट है ठेरे बारे में पूरी जानकारी आ है तो सो जरूर पहुंच ले श्रोता हूँ। लेकिन इन द श्रोतागण के आसपास होगी कनेक्टेड थी है डिसकनेक्ट हो चुके हैं। हेलो
1: हेलो अंजी।
0: अच्छा कनेक्टेड है। नमस्ते जी। नमस्ते
1: नमस्ते जी।
0: क्या हाल चाल ने ठीक ठाक और कर करे लुगरन क्या लूरा कमाना कि नगो आज कना दिन तंदा
1: वाना के तो बस।
0: हाँ जी आवाज नहीं चुंद क्लियर क्या बोल दें जी
1: मेरा दुपारा मोर।
0: हाँ धूप था काफी ज्यादा जी। अच्छा दोपहर ही तो गल करिए तो मेरे माइंड में जी तो धूप बल्लो तो आके मेरे दिमाग में आके सवाल के सो चलिया तुंदी आवाज तो लगू करता कि तुसु लाइफ रा बड़ा एक्सपीरियंस आ तुम तो है खासी उम्र की आ सो तो है एरिया ता क्या है तुंदी मतलब तुंदे बचपना या तुंदी जवानी में तो है एड़ी धर्मशाला में जब पक्खे रुए थी है जी। अच्छा अच्छा तो कितने साल तो तू है कि धर्मशाला में पक्खे हेरने लगे जी।
1: साल
0: हाँ 15-16 साल था हूँ ना बंदे थी ना बंदे थी तो तुझ वो तो है दोनों जमाने के ना सो तो है दोनों हेरे है ना तो है अपना बचपन था जवानी आला जमाना भी हेरो जती है पखे पुखे री कोई जरूरत ना बंदी थी ठंडी हवाएं के ना सो चल दी थी ठंडी फिजाएं के ना सो चल दी थी। अबे ये सब कुछ हेरो भी कर दे तो है इनके पखे रे जरूरत भी प्यो कर दे इस समय भी तापमान कितना ज़्यादा गर्म आ पूरा धूप इस समय खिल रही है ना तो क्या खरा लगता है डेवलपमेंट बुए अक्की साहब भरी ना है डेवलप बुए इन बड़ी चीज़ें जो लेकर कि हागू बैठे ना है डेवलपमेंट रहा मतलब है क्या है बढ़ोतरी करे हागू बैठे ना है बड़ी चीज़ें जो लेकर तो तुस वो हागू बढ़ना खरा लगो कि सो स्थिर क्या थो सो मतलब जो पचो थो सो खरा लगो क्या जमाना खरा लगो तुसु
1: सारा जमाना रे जी तो हो गए सो सारा जो सारा ये सको
0: पचू वाला जमाना खरा तो
1: सारा तो शांत रे जय प्रेम।
0: अच्छा
1: आवे गाड़ी आवे जय रा।
0: अच्छा
1: अपना भगवान ले जे ना तमाड़ो खरे दिन मखारा ना कुछ है मानना ठीक है।
0: जमाना है थोड़ा हुआ चलिए था ठीक है जी जमाना अब बदली गो क्या कर सकते ना बहरहाल तो ये दस की गुण देने की थोड़ा पसंद कर ले अच्छा माता रा भजन होना अच्छा ठीक है जी कोई भी गीत उस वह जरूर होना ले ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: FM 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो चल रही बिल्कुल लाइव तुंदे वीडियो सेट में हाई है कार्यक्रम जो हगो बढ़ दिन शो और सुप्रीम कोर्ट में आह दसू कर दें तुसो की रैबी संक्रमित आवारा कुत्ते जो जान तो मारने रिकी ऐसो अनुमति दिती हा शो तो तू दसना चाहते बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला की है लियो हा शो तो और मानव जीवन री सुरक्षा जो प्राथमिकता दिंदे दिंदे की है रेबीज थों संक्रमित लाइलाज बीमारी थों ग्रसित या खतरनाक आवारा कुत्ते जो जान थों मारने भी अनुमति की है सो दिती है शो तो सो कह दिती है जो कि मानव जीवन इंपॉर्टेंट है मानव जीवन की आ सो इंपॉर्टेंट हा ता बहरहाल इन बहुत सारे श्रोता कॉल करू कर देन कनेक्ट कर लेंदे न फिर खबर खबर होगी तुसु रूबरू करो ले। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी सचिन जी। नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल ने जी?
1: करा करा बढ़िया जगह जगह जगह लेकिन वो सो या पड़ा।
0: चलिए बड़ी अच्छी प्यारी और सिंपल सिटी साधारण गल तो है बल्ले और बड़ी प्यारी गल है। जड़ा दिन निकलेगो सो है अपना है ना जी। आज का दिन भी चलेगो, अभी तरीका चलेगी ना पंचवा महीना लगूरा और आज कणा दिन भी चलेगो। हाँ ए ए बल्ले करी तो बड़ा ही बड़ी चीज आ गया सो है एनालाइज करी की शतों तो ऐसा भूनु कर देने इस समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वीडी गुंजन धर्मशाला सो की बन रहे ना। हाँ जी तू सोची इस समय बड़े श्रोता के ना चलिए ठीक है जी। जलवोने ढोला तू जरूर सुन ले से। बिल्कुल जी बिल्कुल धन्यवाद। चलिए शतो फिलहाल फरमाइश का दौर भी किया सो अह पूरा कर दे हिन चल दे हिन है ना। इतो अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हिन मे बी। नमस्ते जी।
2: राम राम भाई जी।
0: राम राम जी। राम राम। जय सीताराम। कौन बलुंदेन और कड़ी थो बलुंदेन?
2: भाजी अजय कपूर बलुंदा रखड़ थो।
0: अजय कपूर जी रक्कर थाउ तो है बल्लू कर दे हिन। क्या हाल चाल न तुंदे? ठीक ठाक न?
2: बहुत बढ़िया भाई जी। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है।
0: करे लगुरेन रकड़ा वाले?
2: रकड़ा लगुरे अपना अपना बोतर वाला बोतर तैयार करूं दा बर्कली करूं का जोर लावर दे सब।
0: हाँ बिल्कुल।
2: और भाई जी सब बढ़िया?
0: बढ़िया जी बढ़िया। असूले भी की सो बोटा वाले बल्लू करदा असूले भी की सो जो प्रतिनिधि खड़ू रहे जो कैंडिडेट खड़ू रहे सो इच्छु कर देन अपना इंटरव्यू किया सो दिच्छू कर देन और अपना विजन किया सो दसो कर देन कि पंचायत जो लेकर किया सो त्यारा कस तरीके रा विजन किया सो। हाँ इवन कि हब जो भी आके इन द योल थो जो प्रधान पद वास्ते खड़ू रहे सो छूरे थी है चूरे थी सो अपना इंटरव्यू हब जू लियो मैं करी करी गए ता कजो कि योल बड़ी मतलब जी बोलते ने कि होट सीट आ मुझे लगता है योल आला इलेक्शन की सो बड़ा होट बुने आला कजो कि कैंटोनमेंट थो 2023 में कि ये छोटो
2: है ना। बिल्कुल भाई जी सब एक टाइम में बहुत ही मतलब
0: जड़ा होट जो इलेक्शन बुने सो योल में बुने।
2: बिल्कुल बिल्कुल कई जी किन बहुत ही संघर्ष करी करी पंचायत बनाया बड़ा साल लाहौल तेरे बात का संघर्ष करो दी है ताकि तुम्हें मौका मिले और तो बहुत ही उतावल है इस टाइम में जो लक्ष्य न खड़ी सो भी और जेरे वोटर न सो भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल और
2: काफी होना भी कहना चाहिए था कहीं के कुछ था ऐसे मुने इतने साल ला पहली बड़ी वोट पावर दे गुने बेचारे
0: पंचायत जो सुधारने वास्ते पहली बार के सो वोट पाउंदे बुने। बिल्कुल
2: जी बिल्कुल।
0: चलिए ठीक है जी। जो भी पंचायत ठीक है चतैर रही पंचायत रे मनु जो भी फैसला लेंदे जो भी निर्णय लेंदे सो त्यारा भविष्य गया सो तय करदा सो शख्स सो कैंडिडेट सो प्रतिनिधि कौन चुन देन कौन चुन करिंदा और बिल्कुल भविष्य तक भूना है तय कसो की ठीक है चतैर में बहुत
2: अच्छा प्रतिनिधि चुनना के जनता हित मंज कार्य करा
0: कार्य करा। और योल मा दसना चाहता जी योल टीका चतैर मा बहुत कम क्या ना सो प्यूरे इन करने हो मतलब नॉर्मल काम जो हर ग्रह अंदर बड़ा है अच्छा है सुविधाजनक बुंदे हिन स्ट्रीट लाइटर रा काम योली प्यूरा रोड रा काम योली प्यूरा हा पार्क रा काम बच्चे वास्ते है पार्क रा काम किया सो योली प्यूरा बच्चे वास्ते कोई भी सुविधाजनक पार्क किया सो योली मंज हाई नहीं हा लाइब्रेरी योली मंज नहीं हा योल रा युवा किया सोट पटंग विचिजा मंच प्यूरा हा या सूखे नशे माके आसो प्यूरा हा इवन कि आऊँ तो बल्लू करता कि जो पार्क थो सो भी यो ली वे कुछ शरारती तत्व है कि सो तोड़ी ताड़ी करे कि योली रहे या फिर अदर ग्रां रहे कसी भी पर कर रहा है युवा एक जो युवा तिनी है काम कर रहा है जो कि बुजुर्ग और बुद्धिजीवी मनु जो कि सो ऐसा करने की कोई ज़रूरत ना बनते है ना। बहुत सारे काम ने योली में लाइब्रेरी बनाए दिया कम्युनिटी हॉल बनाए दिया जो कि भीड़ी संगड़ी जगह ना सू सब भी ले बहुत सारे काम ना पर हर दिन कौन प्रतिनिधि इंदेन और किए करे काम बंदा किए करे विकास किया सो बंदा हा
2: जी जी बिल्कुल
0: जी। अच्छी जी कौन देने गीत होना पसंद कर ले
2: भाई गीत होना बन्नी वाली माता रे भजन ऐसा तेरा मंदिर आए वो बन्नी माता।
0: ठीक है जी जरूर तू सुई गीत होना ले है।
2: धन्यवाद भाई जी
0: धन्यवाद जी। चलिए जो तो अब फरमाइश रहा दौर किया सो भी है पूरा कर दिन बने रहे तो इस बार से सचिन कपूर सो गए।

श्रोत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा कहना है सोतों दे वेडियो सेट में बिल्कुल लाइव चल रही था श्रोताओं तो है सब श्रोतागण ना सो की जुड़ी जुड़ी सकते कॉल करी सकते और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं श्रोताओं जुड़ने वास्ते अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते 7088879 पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। फरहाल चल दिन कार्यक्रम में जागूँ और महिला जो आत्मनिर्भर बनाने तो जुटी सरकार बनाने में किया सो जुटी सरकार श्रोतों सर रोजगार रे वास्ते कि असो 3 लाख रुपये तक करा ऋण किया सो मिलना है ऋण पर लगने वाले ब्याज में 4% हिस्सा स्वयं वाहन स्वयं की सो सरकार राज्य सरकार किया सो वाहन करना है श्रोतों। पूरी जानकारी तो होगी शेयर कर देने हिमाचल री ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो नई मजबूती देने और महिला जो आर्थिक रूप थो आत्मनिर्भर बनाने वास्ते कांग्रेस सरकार के ऐसो बड़ा दावा खेलो आशतो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखवे नेतृत्व में राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने किया सो चले हा जठेरे तहत श्रोतों ग्रामीण महिला जो स्वरोजगार रे वास्ते किया सो 3 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध भुचिगाना है। खास गल है श्रोतों इतिया कि इस ऋण पर लगने वाला ब्याज रा 4% हिस्सा स्वयं राज्य सरकार है किया सो देना है श्रोतों। सरकार रा दावा है कि ये योजना ग्रामीण महिला जो डेयरी मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन खाद्य पूर्ति करना सिलाई ब्यूटी पार्लर और बुटीक जैसी स्वरोजगार थों जोड़ी करे गाँव में आर्थिक तस्वीर बदलने व काम किया सो करना है। योजना का लाभ तिया महिला जो मिलना है ज्यारे परिवार री वार्षिक आय व अकलक थों घट रहा इनकम सोर्स है मतलब ये होने लिया तो ये सब की योजना का लाभ किया सो तिया महिला जो मिलना ज्यारा परिवार मंज वार्षिक आय 1 लाख रुपये तो किया सो घाटा ऋण सुविधा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम रे माध्यम तो अनुसूचित बैंका द्वारा किया सो उपलब्ध करवाए गाने हैं। मुख्यमंत्री सुखवे बल्लो अशोतों की महिला री भागीदारी रे बिना ग्रामीण अर्थव्य

0: व्यवस्था मजबूत ना बन सकते आती है। वे बोलो कि कांग्रेस सरकार महिला जो केवल सहायता न करोंदे बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाओ कर दे हा और आत्मनिर्भरता रा अवसर देना के या सोचान दे हा। मुख्यमंत्री ये बल्लो अशोताओं की जैन महिला आर्थिक रूप थो सशक्त बुझ गले तब पूरा परिवार मजबूत भूणा हा और ग्रां री अर्थव्यवस्था भी किया सो तेजी थो हगो बढ़ने हा। सरकार ग्रामीण आय बढ़ाने वास्ते डेयरी और प्राकृतिक खेती जो भी बड़ा सहारा किया सो दिता हा। राज्य सरकार गाय व दूध खरीद जो गाय व दूध बेचने जो होने लिया भाई तो है लूरा अगर 45-50 तक असी 51 रुपये थो बढ़ाई करे 60 रुपये प्रति लीटर करे दिया। मैं रहा दूध किया सो ठेर मूल्य किया सो 60 रुपये थो बढ़ाई करे 71 रुपये लीटर किया सो करे दिया। इतों अलावा दूध खरीद केंद्र तक स्वयं दूध पहुंचाने वाले पशुपालक जो प्रति लीटर 3 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी किया सो देगा ऐशो तो मत बढ़ेंदे। मैं सिर्फ तुसो गया आंकड़े के ना सो शेयर करें ये आंकड़े के ना सो बाजार रे आंकड़े है ना ग्रां रे आंकड़े ने ग्रां जी तो है लूरत ही लाए रखा आऊँ तो जस्ट ही बल्लू करता अपने मन हो गए बरा लेंदे अगले श्रोता असू हो कनेक्ट हो चुके हैं ना। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं और कड़ी थम बोल रहे हैं?
1: तो ठात्री बोल रहे
0: हैं। ठात्री थम क्या नाम जी तुम्हारा?
1: ज्ञानचंद।
0: ज्ञानचंद जी करे लुगरन क्या लुगरा कमाना?
1: बस दो पलगुरे थे छाई बेगुरे।
0: दो पलगुरे थे छाई बेगुरे। हाँ
1: जी हाँ जी।
0: बड़ा अच्छा काम आया था।
1: ओ
0: अच्छा और ठंडे ठंडे हवा चल रही था थात्री किनारे की ना जी?
1: ठंडी है तो गर्मी बड़ी बड़ी बच गई है था
0: ना चल रही है अब जो ठंडी हवा संजय रे चल दी बड़े मुझे लगता 7-8 बजे
1: समझ
0: 8 बजे बाद है ना।
1: हां जी हां जी।
0: अच्छा तो ये जड़ी बेकुरे नीड़ी हूं क्या क्या होसदा जी सभी तो ये जड़ी थात्री में बेकुरे ने समय इड़ी तो क्या दृश्य की असो हुजू करदा ये दसा जरा।
1: तो क्या हुई ना ये धारा धोरा रखा तो है।
0: अच्छा
1: आ
0: पहाड़ बिल्कुल समीप इन सोगिन।
1: आ जी ज्योति वखे आईया फिर पल्ले बस है।
0: हां जी
1: हां जी
0: इड़ी तो ज्योत तक होने कितना टाइम लगता जी?
1: टाइम तो मता लगता काफी लगता
0: काफी टाइम।
1: हां जी हां जी
0: चले कदे गो अचकना दिन तंदा
1: बस बढ़िया है जी मालका दे ठीक ही है।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
1: पाई दिया चननी उठाई दिया
0: चननी लाने तो सुआ जाए।
1: हां जी हां जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर ले ले।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो सब हुण कर देना आरजे सचिन कपूर सोगे और कार्यक्रम बिल्कुल लाइव इस समय की आंसू चल रहा था। चलिए जी फरमाइश दौर के आंसू आंसू जरूर पूरा करना है। प्राकृतिक खेती जो भी बढ़ावा देना है ये भी सरकार रा न्यूनतम समर्थन मूल्य माँ के ऐतिहासिक वृद्धि की असो बोल सकते हैं। श्रोताओं प्राकृतिक खेती थो उत्पादित गेहूं रा मतलब जड़ी 60 रुपये बड़ी करी 80 रुपये प्रति किलो करी था मक्की रा 40 थो 50 रुपये और कच्ची हल्दी व समर्थन मूल्य भी करो हा तो 90 रुपये थो बढ़ाई कर 150 रुपया प्रति किलो के असो खरीदते हैं। श्रोताओं तो बहुत अच्छी गल है था खबर वाकई में जिन्हें भी पढ़िया जिन्हें भी होने माफ़ करा पढ़ी तो मैं लेकिन रेडियो रे जरिए जिन्हें भी श्रोता किया सो होने तो तीनों भाई साहब लाभ बुने वाला 3,00,000 रुपये तक ऋण किया सो मोलना हा। चलिए इसी प्रकार होगी कार्यक्रम मंच तो यह सब बने रहे शो तो हाई है लेकिन चलते तू सब भी हो और फरमाइश दौर के सो अब पूरा कर देना।

श्रोतों, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम इन थी अपनी गप्पा के नए सो चल रही हैं। श्रोतों, आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगु बढ़न देन और बन्नी माता जी रा भजन के ऐसो हुन्ना हा मनु माफ करा इन द रेगुलर रेगुलर श्रोता बल ले सकते हैं। सो इन तिन्या हुन्ना हा अजय त्यारा ना रख रहे निवासीन। श्रोता, हिमाचल में अगली जानकारी दी और हिमाचल में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी तरह होगी कि असो सामान्य। तेल कंपनी री जनता थो विशेष अपील है कि पैनिक ना भून और ना करन, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही किया सो भरोसा करन। फिलहाल ताली तक कोई कमी नहीं है बल्लू करते हैं हिमाचल में पेट्रोल डीजल री और रसोई गैस री कोई कमी नहीं है, सिर्फ आकर सिस्टमेटिकली चीज़ा के नसो करू करते हैं। और फिलहाल तो अब बल्लू होते हिरदेन हिमाचल प्रदेश में ईंधन री ऊर्जा उपलब्ध सुनिश्चित करने वास्ते तेल उद्योग स्टॉक भी हा और बल्लूगर्दन की डीजल पेट्रोल स्टॉक भी है, रसोई गैस रा स्टॉक भी हा। तो चलिए फिलहाल स्टॉक हा तो चिंता भी फिलहाल तो कोई गल नहीं है, बाकी 15 दिन बाद बुआ महीने बाद बुआ सुसू भी पता जी जो भी जानकारी दें इस कार्यक्रम रे माध्यम थो तुसु तक जरूर पहुँचल रहे।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्स पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है ना। ता श्रोताओं बखूबी तो है प्रदेश भर रही जानकारी थों कि ऐसो रूबरू हुए बुणन और अब इस प्रकार सो की तुसु रोजाना की ऐसो रूबरू बुणा। हाँ श्रोताओं पूरे प्रदेश भर रही जानकारी था और गंद गंदा एक आखिरी फरमाइश है अभी ऐसो जरूर पूरा कर दे चल दे। इन श्रोताओं चन्नी गीत तरह बोल हिंद सुनील राणा द्वारा गीत की ऐसो गुनगुनाएगा चूला। हाँ श्रोताओं और मुंजो यानी सचिन कपूर जो दया तो है इजाजत गंद गंदे बनना चन होते हो सब हंस दे रहे मुस्कुरा दे रहे और वेड़ी गुंजर में आर जे सचिन कपूर जो ये प्यार दिन दे रहे और ये हुन दे रहे मुलदन फिर अपना गादा कार्यक्रम लेकर ही दत्ते नमस्ते धर्मशाला करा थी तक इंतजार। माता पिता री सेवा हमेशा कर दे रहा बुजुर्ग री सेवा हमेशा कर दे रहा और पर्यावरण जो साफ सुथरा जरूर रखा। नमस्ते धर्मशाला।

0: नमस्कार, आप सभी का वेड़ी गुंजन धर्मशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सुनेंगे समाचार बुलेटिन। शिमला में पेट्रोल 99.27, डीजल 91.26 रुपए पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक और रैबिज संक्रमित आवारा कुत्तों को जान से मारने की अनुमति दी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी सरकार, स्वरोजगार के लिए मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ऋण। नीट पेपर लीक परीक्षा व्यवस्था पर कलंक, दोषियों को मिले फांसी की सजा, ऐसा शांता कुमार का कहना है। निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत, सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर। हिमाचल में 176 प्रधान, 286 उप प्रधान समेत 10,855 उम्मीदवार निर्विरोध चुने। गुणात्मक शिक्षा में 13वें से 6ठे पायदान पर पहुंचा हिमाचल। किसानों को झटका, 50 रुपए महंगी मिलेगी अब डीएपी व एनपीके खाद। फीस जमा न करवाने पर प्रदेश के 18 बीएड कॉलेज की मान्यता पर संकट। दिव्यांग कोटा फर्जीवाड़े में सख्ती, नौकरी से पहले दोबारा मेडिकल। हिमाचल में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कोई कमी नहीं, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 100% छात्र उपस्थित वाले शिक्षक ही होंगे पात्र। अब समाचार विस्तार से। देश में एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद शिमला में पेट्रोल 99.27 रुपए और डीजल 91.26 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हमीरपुर के सुजानपुर में पेट्रोल 98.27, डीजल 88.66 रुपए हुआ है श्रोतों। ऐसे ही अन्य जगहों पर जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है श्रोतों। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, इससे खाद वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी। राज्य में अगले महीने से सेब सीजन शुरू हो रहा है, इससे सेब की ढुलाई महंगी होगी, बागवानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश की सबसे बड़ी बद्दी की ट्रक यूनियन 4 दिन पहले ही माल भाड़ा बढ़ा चुकी है। आर्थिक संकट से जूझ रही प्रदेश सरकार कभी भी पेट्रोल डीजल पर अधिकतम 5 रुपए प्रति लीटर तक जो है वो प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को जान से मारने की अनुमति दी है। जी बिल्कुल श्रोताओं, मानव जीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की अनुमति जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनबी की पीठ ने देशों में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और कड़े शब्दों में कहा है कि आवारा कुत्तों को जान से मारने की निर्देश स्थानीय निकायों और संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं। आदेश में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है, कोर्ट ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में आवारा कुत्ते की संख्या चिंताजनक स्तर पर और वहाँ बार बार कुत्तों के काटने या आक्रामक हमलों से जन सुरक्षा को लगातार खतरा पैदा हो रहा है, वहाँ स्थानीय अधिकारी कुत्तों को जान से मारने का निर्णय ले सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी सरकार, स्वरोजगार के लिए मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ऋण। जी बिल्कुल श्रोताओं, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बड़ा दावा खेला है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। खास बात यह है कि ऋण पर लगने वाले ब्याज का 4% हिस्सा स्वयं 4% हिस्सा स्वयं राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का दावा है कि ये योजना ग्रामीण महिलाओं को काफी ज्यादा लाभ जो है वो देगी और आर्थिक तंगी से जो है वो भी बचाएगी। नीट पेपर लीक परीक्षा व्यवस्था पर कलंक, दोषियों को मिले फांसी की सजा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को परीक्षा व्यवस्था के माथे पर कलंक बताया। उन्होंने कहा कि ये लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किया गया एक बड़ा खिलवाड़ है और और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसी घटनाएं श्रोताओं पहली बार नहीं हुई हैं, बल्कि पहले भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे हैं। शांता कुमार ने कहा कि भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल कर रहा है और बंगाल की ऐतिहासिक जीत केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धता है, लेकिन यदि आम लोग और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सफलता नहीं मिलती तो ऐसी उपलब्धता भी किसी काम की नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में विशेष और कठोर कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराध सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि ये लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य पर सीधा हमला है। निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत, सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर। प्रदेश के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त व्यापक जन समर्थन को राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों और विकास शून्यमुखी दृष्टि में अपना। इसी के साथ ये समाचार इसी के साथ आपको लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। स्कूल जा रही छात्रा से युवक ने की छेड़छाड़, मामला दर्ज। डाडासीबा क्षेत्र में स्कूल जा रही एक नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ की घटना जो है वो पूरे इलाके को कहीं ना कहीं दुखी कर रही है और कहीं ना कहीं झंझोड़ कर जो है वो रख रही है। श्रोतों, दिन दिहाड़े हुई इस शर्मनाक वारदात के बाद क्षेत्र में भारी रोष फैल गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 25 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिका छात्रा जो है वो रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी युवक ने उसे अकेले पाकर कथित तौर पर गलत नीयत से शरारत करने की कोशिश की। अचानक हुई इस घटना से डरी सहमी छात्रा किसी तरह वहां से निकली और घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई। परिजन भी कहीं ना कहीं इस घटना से जो है वो दुखी हुए। घटना का पता चलते ही परिवार में हड़कंप मच गई। परिजन तुरंत पुलिस थाना डाडासीबा पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जिला पुलिस प्रमुख एसपी मयंक चौधरी ने कहा कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर गहन जांच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज चुके हैं और ये समय रहता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को दो हाथ जोड़कर सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछूंगी कि आज मौसम कैसा रहा। आज आपको गर्मी ने ज़रूर सताया होगा, क्योंकि आज गर्मी थी ही बहुत। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो कि आपका अपना कार्यक्रम है, जिसमें हम आपके साथ रोज़ाना करते हैं किसी न किसी विषय पर खास बातचीत, और साथ ही लेकर आते हैं जानकारियों का पिटारा, जिसमें से ज़रूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की हमारी रहती है कोशिश। और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीतों को भी हम लेकर आते हैं माला में पिरोकर, जिसका एक एक मोती हम आपके समक्ष रखते हैं इस कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत पहले तो कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ, और आज का विचार यही कहता है कि इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद जीवन में कभी भी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। बिल्कुल श्रोताओं, ये जो विचार है ये कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग पर कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ते हैं, और कुछ ना कुछ हमें सीखने पर मजबूर करते हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है बातों के साथ, और अब देर है तो सिर्फ गीत की। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं आज के कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। तो श्रोताओं, आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत, इंजॉय कीजिए।

श्रोताओं, बेमिसाल फिल्म का बेमिसाल सा गीत आप तक हमने पहुंचाया रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। खैर, गीत तो था पवन का कि एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, लेकिन आज मुझे लगता है कि पवन कहीं खो सी गई है और पवन है ही नहीं। गर्मी जो है वो प्रचंड अपना रूप जो है वो दिखा रही है और आज पूरा दिन बहुत तेज़ गर्मी रही। श्रोताओं, आप सभी ने भी इस चीज़ को फील किया होगा। आपको बता दें 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस समय कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। साथ ही आपको बता दें कि हमारे श्रोता बहुत दूर दूर से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। 88.4 MHz पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो हमीरपुर में जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे। और अगर बात करें मौसम की तो धर्मशाला में जितनी गर्मी है मेरे ख्याल से हमीरपुर में भी वही हाल होगा। तो श्रोताओं, आप सभी अपना ख्याल रखिए, और गर्मी हो या सर्दी कहीं ना कहीं हमें अपना ख्याल रखना भी पड़ता है। और श्रोताओं, कहते हैं ना कि जब भी कोई ऐसी बात होती है, मौसम चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अपने पुराने दिन या पुरानी बातें बहुत सारी याद आती हैं, और आज ऐसा ही था। आज दिन में बहुत तेज़ गर्मी थी, तब एहसास हुआ कि हम लोगों ने बड़े पक्के मकान तो बना लिए हैं ईंटों से, सीमेंट से, और बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हमने बना ली हैं, लेकिन ये कोठियाँ जब सूरज की गर्मी से तप जाती हैं तो हमें बहुत बुरी लगती हैं। तब दिल करता है कि कहीं यहाँ से निकल के बाहर कहीं जंगल की ओर निकल जाएं जहाँ ठंडी ठंडी हवा हो। लेकिन फिर भी वही बात है कि जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आज हमने एक विचार भी आपके समक्ष रखा था, और वो विचार बिल्कुल ठीक बैठता है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। बिल्कुल, हम जितना ज़्यादा जिस चीज़ से बचते हैं या अपने आप को जितना सेफ रखते हैं, जितना संभाल कर रखते हैं, आराम में रखते हैं, उतना ही हमें और दिक्कत परेशानियां होती हैं। लेकिन अगर बाहर देखें तो गर्मी सभी को लगती है, लेकिन जो खेतों में काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है, लेकिन एहसास उन्हें नहीं होता क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। तो श्रोताओं, हमें किसी भी समय को, किसी भी मौसम को बिल्कुल हंसते हुए बिताना चाहिए और अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए अपने काम में, और सुविधाओं को थोड़ा सा हमें परे कर देना चाहिए। फिर वही बात आ गई कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग बिल्कुल सही कहा करते थे कि कच्चे मकान अब तो बहुत कम रह गए हैं देखने के लिए, लेकिन आने वाले समय की मांग रहेगी कच्चे मकानों की, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ऐसे में कच्चे मकान हमें याद आते हैं। कच्चे मकान जो मिट्टी से बनते थे और सर्दियों में वो गर्म हो जाते थे, गर्मियों में ठंडे, तो अब वो मकान, वो दिन, वो सब यादें याद आती हैं। और आप में से भी बहुत सारे श्रोता होंगे जो सच में इस बात को फील करते होंगे और समझते भी होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों का सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन प्यारे प्यारे गीतों का सिलसिला हमें बिल्कुल भी नहीं रोकना है। तो चलते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत, अकेले हम अकेले तुम। इस फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की प्यारी आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्स पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। सभी श्रोताओं को पता है कि गुड इवनिंग धर्मशाला का समय क्या रहता है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का समय रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का रहता है, क्योंकि श्रोताओं बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता भी होते हैं जो नए हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जितने भी नए श्रोता अगर हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है रेडियो गुंजन धर्मशाला में और इस कार्यक्रम में। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस गीत के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपनी बातचीत को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हर साल आज के दिन विश्व वी दिवस हम मनाते हैं और हमें ये संदेश देता है ये दिन कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वी यानी जीवन, विकास और एक बेहतर भविष्य की सोच। श्रोताओं आज के समय में बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हमारे आने वाले कल के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में हमें छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे बड़े बड़े बदलाव होते हैं। और श्रोताओं आजकल की भारी प्रचंड गर्मी में हमें एहसास होता है कि हमारे लिए पेड़ कितना ज़रूरी है। जहाँ 4-5 पेड़ दिखे और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो हम कहीं भी अगर पैदल भी चल रहे हैं या थक गए हैं तो हम देखते हैं कहाँ हमें पेड़ की छांव मिल रही है, कहाँ हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही है, वहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। सोचिए अगर ये पेड़ ना हो तो हम क्या करेंगे, या तो किसी बिल्डिंग का सहारा लेंगे, बिल्डिंग की छांव में खड़े रहेंगे, वो बिल्डिंग हमें ज़रूर थोड़ी देर के लिए गर्मी से बचा सकती है लेकिन ठंडी हवा वो नहीं दे सकती है। और अगर बिल्डिंगों की बात की जाए तो आजकल के समय में हर घर में हर बिल्डिंग में एसी चलता है और दिन के समय में जब सबके एसी ऑन होते हैं तो आप बाहर का माहौल देख सकते हैं कैसा होता है। वहाँ जीना तो क्या, एक सेकंड के लिए अगर खड़ा होना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल लगता है। तो श्रोताओं एसी तो आज शुरू हुए लेकिन पुराने समय में ये वातावरण, ये पर्यावरण ही हमारा असली एसी हुआ करता था, जहाँ लोग बैठकर अपनी तेज़ धूप को, गर्मी को झेलते थे या उससे बचने के लिए बैठते थे और बातचीत करते थे। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे दिन की तेज़ धूप में शायद ही आपको कोई बाहर नज़र आएगा, और अगर नज़र आएंगे भी तो अगर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा गांव में जहां थोड़े बहुत वन बचे हुए हैं। तो श्रोताओं आज अगर हम समझ सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है तो शायद हम अपना जीवन और अच्छे से बिता पाएंगे, हम या हमारे आने वाली पीढ़ी। उनके लिए ये जंगल, ये वन बहुत ज़रूरी हैं, ये पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। तो आज ही इस बात को समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं, संकल्प लेते हैं धरती को हरा भरा और सुरक्षित बनाने का, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुंदर और स्वच्छ वातावरण मिल सके। तो श्रोताओं अपनी बातों को यहीं पर रोकती हूँ और चलती हूँ कार्यक्रम में आगे। आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत, दिल अपना और प्रीत पराई। इस फिल्म का गीत श्रोताओं लीजिए आप सभी के रेडियो सेट पर लता मंगेशकर की आवाज में।
1: आइकन को प्रेस करें।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस समय कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस हम लौटेंगे कार्यक्रम में और आपके साथ करेंगे बातचीत। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आपके साथ हम करते हैं बातचीत और जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। श्रोताओं, तो थोड़ी सी बात हम करेंगे आजकल के समय की। आजकल के समय में थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और किसी पर भी हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि

0: कल के समय पर किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास मत कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। एक खबर है जिसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। ये जो खबर है ये धर्मशाला की ही है। धर्मशाला कोतवाली बाज़ार से ऊपर एक गांव है जिसे कहते हैं नारोजी रोड। उस रोड पर रात के करीब 2-2.5 बजे की बात है, 2 दिन पहले की, वहाँ के एक घर वालों ने अपने घर का एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर में रात के समय चोरी हो गई, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। अगले दिन जब घर का कोई सदस्य उस मंदिर में पूजा करने के लिए उठे और गए तो देखा कि वहाँ पर बहुत सारा सामान गायब था, जिसमें से कि त्रिशूल थी, कमंडल था और शिव भगवान का डमरू था और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी जो एक चोर उठाकर जा सकता था। हो सकता है कि उस चोर को लगा होगा ये मंदिर बड़ा है और यहाँ कहीं दान पेटी रखी होगी जिसे मैं चुरा कर चला जाऊँगा, लेकिन दान पेटी तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ जो कीमती सामान वो निकाल सकता था वो गायब था। घर के सदस्य ने सोचा कि शायद हो सकता है बच्चे खेलते हैं और खेलते खुलते मंदिर में आ गए हों और कुछ सामान उठाकर यहाँ वहाँ रख दिया हो, लेकिन जब पूछा गया तो किसी ने भी उस सामान को नहीं उठाया था और उस घर में सीसीटीवी कैमरा जो थे वो लगे हुए थे। जब सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए तो पाया गया कि रात के करीब 2.5 बजे, 2-2.5 बजे का टाइम था, उस समय एक अनजान व्यक्ति जो कि वहाँ का नहीं दिख रहा था, खैर अंधेरा था इसलिए उस व्यक्ति की पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन वो व्यक्ति रात के 2.5 बजे किसी तरह से उस घर के जो साइड में एक रास्ता बना था उसमें से चढ़ता हुआ मंदिर में गया और वहाँ से जो भी सामान उसे लगा कि वो चुरा सकता है उसने वो चुराया और चल दिया। श्रोताओं, ये कहानी बताने का मकसद बस यही है, ये खबर सुनाने का मकसद बस यही है कि रात के समय हम लोग सो तो जाते हैं, खैर सोने के लिए रात बनी है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल कहीं भी कितने भी सीसीटीवी कैमरास आप लगा लो, लेकिन जिन्होंने चोरी करनी है वो आपके सामने से चोरी करके निकल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्रोताओं, ये खबर इसलिए सुनाई जा रही है कि आप लोग भी सतर्क रहें, खास करके रात के समय जब हम सभी सो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, और अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो इन खबरों से या इन हादसों से बच पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी धर्मशाला की खबर जो आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, और इस खबर को पहुँचाने का मकसद यही है कि आप लोग सभी सतर्क रहें। तो श्रोताओं, इस खबर के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, राजकुमार। इस फिल्म का गीत अब आप सुनने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी की प्यारी आवाज़ में।
1: गाने और कुछ याद।

ना ये प्यार मोहब्बत

बिल्कुल श्रोताओं, ये गीत आप सभी ने सुना है। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, बिल्कुल, तो हमें सतर्क रहना है। और सच में आजकल के समय पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए सतर्क रहिए, खास करके अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अनजान लोगों से बचकर रहें। ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं हमें सोशल मीडिया पर दी जाती हैं, खबरें भी दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, ताकि हम उन खबरों से कुछ सीख सकें और सतर्क रह सकें। तो श्रोताओं, ऐसी खबरें तो हम पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, और साथ ही बहुत सारी सीख भी हम लेते हैं और लेनी भी चाहिए। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि समय हमेशा बदलता रहता है, और जो लोग समय के साथ चलना सीख लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज अगर ज़रूरत है तो वो है कि हम पुरानी रीति रिवाजों से और ऐसी परंपराओं को छोड़ें जो हमारी सोच और तरक्की को रोकती है। जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, अगर उन्हें हम रोक सकते हैं अपनी सोच को बदलकर, तो ज़रूर उस सोच को बदलना चाहिए। श्रोताओं, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार, अनुभव और जीवन जीने की सीख दी है। उनका सम्मान करना और उनकी बातों से सीख लेना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि बदलते समय के साथ नई सोच अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों के साथ एक बात और कार्यक्रम में मैं जोड़ना चाहूँगी श्रोताओं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खबरें हम लोग सोशल मीडिया पर भी आए दिन सुनते रहते हैं, और एक ऐसी खबर आपने सुनी होगी, एक नव विवाहिता जिसकी शादी को 1 साल हुआ था, और ससुराल पक्ष की ओर से वो थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन फिर भी हमारे समाज में हमारे जो माता पिता हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं हमारी नाक ना कट जाए, कहीं हमारे रिश्तेदार कुछ बोल ना दें, इसलिए अगर कुछ 19-20 अगर होता भी है ससुराल में, तो बेटियों को कहा जाता है कि कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो समय नहीं आता, और समय आता है तो ऐसा जो हम सभी को रुला देता है, या वो मंज़र हमने कभी सोचा भी नहीं होता, वो हमें देखना पड़ता है। तो श्रोताओं, ऐसी खबरें कहीं ना कहीं हमें झिंझोड़ के रख देती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि अगर हम लोगों को देखते रहे, लोगों के बारे में सोचते रहे, तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे, हम अपने बच्चों के बारे में कब सोचेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। कहीं भी अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है, तो हमारा यही मानना है कि जीवन है तो सब कुछ है, जीवन बहुत अनमोल है, चाहे वो किसी का भी है। रीति रिवाज और इन परंपराओं के पीछे या अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए हम किसी की बलि नहीं दे सकते। इसलिए जाग जाइए, सोचिए, समझिए, जागरूक बनिए, बेटियों को इस तरह से ख़त्म ना होने दें। तो ये खबर आप सभी ने सुनी होगी, और जो दहेज के लोभी होते हैं वो तो हटते नहीं हैं, क्योंकि वो अब जिनके हाथ पैर हैं वो कमा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कमाना नहीं चाहते, वो बस किसी को प्रताड़ित करके कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और बच कर रहें, हम यही कहेंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातों के साथ साथ गीतों का ये सिलसिला जो है इसे भी चलाते हैं। तो सुनते हैं तेजाब फिल्म का अगला प्यारा सा गीत। आवाज़ें हैं इस गीत में अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल की।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोता, इस गीत के बाद हम अपनी बातों को फिर से जारी रखेंगे। इस गीत से पहले हमने बात की थी कि समय हमेशा बदलता रहता है और जो लोग समय के साथ चलना सीख लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार, अनुभव और जीवन जीने की सीख दी है। उनका सम्मान करना और उनकी बातों से सीख लेना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि बदलते समय के साथ नई सोच अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। आज के युवाओं के पास श्रोताओं नई ऊर्जा, नए सपने और नई तकनीक है। अगर युवा अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो वे अपने परिवार, गांव और देश का भविष्य बदल सकते हैं। तो श्रोताओं, बदलाव का मतलब अपनी संस्कृति को भूलना नहीं होता, बल्कि अच्छी बातों को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। अगर बुज़ुर्ग अपने अनुभव से युवाओं का मार्गदर्शन करें और युवा नई सोच और मेहनत से आगे बढ़ें तो समाज और भी मजबूत बन सकता है। श्रोताओं, अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी सीख देते थे, बहुत सारी ऐसी सीख देते थे जिससे कि हम कहीं भी कोई भी धोखा ना खाएं जीवन में, हमेशा किसी भी कैसे भी वक्त में अपने आप को ढाल लें। लेकिन आजकल का जो समय है, आजकल के समय में हम अपने बच्चों को इतना ऐसा रखते हैं कि बच्चों को कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन्हें हर चीज़ वहाँ समय पर मुहैया कराने की पूरी हमारी कोशिश रहती है। माता पिता हैं वो तो ऐसा करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को अगर हम शुरू से ही स्ट्रगल सिखाएं, शुरू से ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, हर काम को उनके हम ना करें, उन्हें करना सिखाएं, तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अपने बच्चों को प्यार भी दें, लेकिन साथ ही साथ समय के साथ आगे बढ़ना भी सिखाएं। कैसा भी समय आ सकता है उसे कैसे हमें जीना है, किस समय पर क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है, ये सब बातें बच्चा जो है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें जो हैं वो अब ज़्यादा हो रही हैं, तो इन्हें यहीं रोकते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ। और इस गीत के साथ ही कुछ ही समय में समय हो जाएगा समाचारों का। तो चलते हैं, सुनते हैं जोशीला फिल्म का एक और प्यारा सा गीत, आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में आज इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा खरीद कार्यक्रम प्रशासन मंत्री ली जोंग चुल से सोल में मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, उत्पादन और निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार तंत्र को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट UG पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा और उत्पादन भागीदारों तथा उद्योग जगत की सराहना की है। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के शिष्टमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि प्रस्तुति में एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदों के बारे में बताया गया। इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया और समिति के सामने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू की आशंका व्यक्त की है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू चल सकती है। असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। सभी श्रोताओं को जो हमारे साथ 6 बजे से जुड़े हैं उन्हें भी, और कुछ श्रोता जो देर से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन्हें भी एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और इस कार्यक्रम के साथ ज़रूर जुड़े होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों का सिलसिला हम ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत फिर से हम एक बार फिर से कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलिए श्रोताओं, लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत भ्रष्टाचार फिल्म से। इस गीत को आवाज़ों से सजाया है सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल ने।
2: तुम भी गाओ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत को सुन के ज़रूर आप लोगों ने भी इसे साथ में गुनगुनाया होगा। श्रोताओं, ज़रूर गुनगुनाइए, अगर आपको गीत नहीं भी आते तब भी गुनगुनाइए। कोई सुनता है तो सुनता रहे, कोई देखता है तो देखता रहे, लेकिन जब मन करे थिरकने का थिरक लेना चाहिए और गीत को भी गुनगुना लेना चाहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब थोड़ी सी बात हम करेंगे आजकल के मौसम की। आजकल गर्मी जो है वो बहुत बढ़ गई है, और ऐसी गर्मी में आपको बता दें कि हमारे जो जंगल हैं, हमारे जो वन हैं, उनमें भी गर्मी बढ़ जाती है। और वो किस लिए बढ़ती है? क्योंकि वहाँ तो पेड़ होते हैं, वहाँ तो गर्मी बढ़नी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गर्मी बढ़ जाती है या बढ़ा दी जाती है, वो हम सब जानते हैं। जंगलों में आजकल आग लग जाती है या लगा दी जाती है, लेकिन हम यही कहते हैं कि जंगलों में आग लग गई है। आग अपने आप तो नहीं लगती श्रोताओं, किसी ना किसी की कोई ना कोई कारस्तानी ज़रूर रहती है। कई बार हम इंसान बहुत स्वार्थी हो जाते हैं श्रोताओं, अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए हम बहुत सारा प्रकृति का नुकसान कर देते हैं। और ये जंगलों में ही आग क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ के लोग जिन्होंने मवेशी पाले होते हैं, गाय और भेड़ बकरियां, जो भी आप लोगों ने पशुधन पाला होता है, उनके लिए हमें चाहिए हरा चारा। हरा चारा कैसे आएगा? जब उन जंगलों में चीड़ के पेड़ लगे होते हैं, और चीड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी वजह से जो नीचे से घास धरती से उगनी होती है वो नहीं उग पाती है, और कहीं ना कहीं हमें घास की वो जो कलियाँ जो निकलती हैं, घास जो निकलता है, उन्हें रास्ता देने के लिए उन चीड़ की पत्तियों को साफ़ करना पड़ता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, एक ही आसान सा तरीका हम आजमाते हैं कि जंगलों में चुपचाप आग लगा देते हैं। वो आग बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है, किस गांव तक, किस घर तक वो चली जाएगी, इसका हमें कोई भी अंदाज़ा ना होता है। और अगर होता भी है तो भी हम अपना काम कर देते हैं कि भाई हमारा घर बचा है, हमें घास से मतलब है, जंगल जलते हैं तो जल जाएँ। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि इस धुएं से बहुत सारे बुज़ुर्गों को या बच्चों को नुकसान होता है, क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा जो धरती में छोटे छोटे जीव जंतु हमारे बहुत सारे रहते हैं, उन्हें भी नुकसान होता है। पेड़ों के तनों की बात कीजिए, पेड़ों के तनों में बहुत सारे तोते, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो अपने घोंसले बनाकर बैठे होते हैं, तो उन्हें भी उस धुएँ से नुकसान होता है। तो एक छोटे से अपने स्वार्थ के लिए हम इतने बड़े जंगल को आग लगा देते हैं। अब सरकार तो वैसे भी बहुत जागरूक हो चुकी है और कहते भी हैं कि जंगलों को बचाइए, आग ना लगाइए, लेकिन फिर भी हम है कि हम मानते ही नहीं हैं, और हम मानेंगे भी नहीं, क्योंकि हर साल हम यहीं आकर इसी रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से आप तक ये बात पहुँचाते हैं, लेकिन हर साल आग वैसे की वैसे ही लगती है। तो श्रोताओं, समझ जाइए क्यों ऐसा करना है। ये प्रकृति है, हमें बहुत कुछ देती है, हमें ही नहीं, बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है, बहुत सारे जानवरों का ये घर है, इसे संभालिए, संजोइए, आग ना लगाइए। और अगर आपने घास लगाना ही है तो उन चीड़ के पत्तों को या जो चीड़ के पत्ते गिरते हैं उन्हें आप अलग से निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से उसे निकालिए और आपकी घास के लिए जगह बन जाएगी, ना किसी को नुकसान होगा ना कुछ। और आपको बता दें कि इन चीड़ के पत्तों से अब तो बहुत सारी महिलाएं, क्या बहुत सारे पुरुष, बहुत सारा सामान बनाने लग पड़े हैं। प्लेट्स आप ले सकते हैं, कप्स आप ले सकते हैं, बहुत सारे बर्तन जो है उन चीड़ के पत्तों का इस्तेमाल होकर बनता है। तो जागरूक बनिए, समझदार बनिए, स्वार्थी बिल्कुल भी मत बनिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। खलनायक इस फिल्म का गीत अब आप सभी के रेडियो सेट पर अलका याग्निक की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोता, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे जंगलों में लगने वाली आग या जंगलों में लगाई जाने वाली आग के बारे में। तो आपको बता दें कि आग और पानी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच पाना बहुत मुश्किल है और बहुत नुकसान इनसे होता है। एक ऐसी ही खबर आपको हम सुनवाने वाले हैं। कालेश्वर में दर्दनाक हादसा, ब्यास में डूबने से युवक की मौत हुई। तो श्रोताओं, आजकल गर्मियों का ये समय है और ऐसे में हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो कई बार कहते हैं कि हमें बहुत गर्मी है। तो ऐसे में हम लोग कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी कोई नदी या ऐसा पानी का स्रोत है वहाँ जाकर नहा कर आते हैं, गर्मी से बच जाएंगे और थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। और ऐसे में हम लोग भी बच्चों को भेज देते हैं कि ठीक है जाइए, लेकिन संभल के जाना। लेकिन श्रोताओं, कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाए इसका हमें भी पता नहीं होता है। ख़ास करके आजकल के समय में ये जो सेल्फी लेने का एक रिवाज चल पड़ा है, जिसे हम कहेंगे रिवाज, या रील बनाने का एक जो दौर चला हुआ है, उस दौड़ में हम सभी इतनी तेज़ भागे हुए हैं कि हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं हैं। कहीं भी कोई अच्छा सा व्यू दिखा, कोई पहाड़ दिखा, कोई नदी दिखी, कोई नाला दिखा, हम वहीं उतर जाते हैं एक सेल्फी के लिए, उस रील के लिए। और कब कहाँ हमारा पैर फिसल जाए, कब कौन सा हादसा हो जाए, पता भी नहीं चलता। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, गर्मियों का ये समय है, ऐसे में गर्मियों से बचने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं कहीं भी जाने की, तो अपने आप को सेफ रखें, अपनी सावधानी रखें, और आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे बचाएं। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए हमें खुद को सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी जाएं, वहाँ किसी बड़े को, किसी समझदार को अपने साथ लेकर जाएं और सेल्फी से थोड़ा सा बचें, पानी की गहराई में ना जाएं, और जहां आपको लगता है पानी का बहाव ज़्यादा है उस जगह को अवॉइड करें। तो इस छोटी सी बात के बाद अब कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे गीत संगीत की तरफ और सुनवाएंगे आपको संघर्ष फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, इस गीत को आवाज़ों से सजाया है सोनू निगम और साधना सरगम ने।

विक्रम, गुड इवनिंग। धर्मशाला में समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और आपको बता दें कि आप सभी ने 91.2 MHz पर ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाते हैं तलाश फिल्म से। और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब थोड़ी ही देर बाद समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से शुरू हो रहा है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। जनगणना के सफल कार्यान्वयन को लेकर आज जनगणना कार्य निदेशालय शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीबीसी और पत्र सूचना ब्यूरो के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जनगणना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति बनाई गई। जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार परिवार को स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा और लोग पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से वेब पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से जनगणना में सहयोग की अपील की है।
1: हिमाचल प्रदेश में जो जनगणना 2027 उसका प्रथम चरण जो कि मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण है, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर कंडक्ट हो रहा है। और इस बार हमारा जो सेंसस है वो डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए जनगणना में स्वगणना का जो प्रावधान है उसे भी रखा गया है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं वो स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी 1 जून से 15 जून के भीतर उसको दर्ज कर सकते हैं। प्लीज आप स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। जनगणना की जानकारी जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। यदि कोई स्वगणना के विकल्प को भी नहीं चुनता है तो भी जो हमारा प्रगणक है वो हर जगह जाएगा, हर कोने में जाएगा, देश के हर एक घर को जो है वो कवर किया जाएगा।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किए गए युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल और पुडुचेरी के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान की एक अनूठी पहल चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में एनआईटी पुडुचेरी के 48 छात्रों और फैकल्टी समन्वयकों का एक दल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला पहुंचा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मजबूती मिलेगी और इसके माध्यम से युवाओं को देश के सभी राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
2: मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम रहते हैं वो देश की एकता और अखंडता को उसको मजबूत बनाते हैं। पुडुचेरी से जो छात्र आए हैं एनआईटी के माध्यम से, वो इस कार्यक्रम के दौरान पूरे हिमाचल को जानेंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति, यहाँ का जो देवत्व है उसको अभी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है ये निश्चय ही भारत को मजबूत करने में एक नया मील पत्थर साबित है। विविधता में एकता, ये भारत की खूबसूरती है। उसी के आधार पर भारत हजारों वर्षों से दुनिया में एक अलग तरह से है।
0: इस बीच राज्यपाल ने आज कांगड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल गुजरेड़ा का दौरा कर बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। कविंद्र गुप्ता ने बच्चों को समर्पण व आत्मविश्वास के साथ शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने बेहतर कक्षाओं, स्वच्छता सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा संसाधनों और ग्रामीण विद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में छठा स्थान प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश 7 अंकों की छलांग लगाकर 13वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए शिक्षा विभाग के सभी अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं और सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू कर दिया गया है। सुखविंदर सिंह सुखू ने बताया कि सरकार द्वारा अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजा जा रहा है और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी विदेश भ्रमण करवाया जा रहा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज मंडी जिले में सराज विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जिला परिषद चुनाव के भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले वर्ष आपदा के दौरान सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में भी नाकाम रही है और ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसें अभी भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत व नगर परिषदों के चुनाव परिणामों से ये स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी।
3: ये नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का संदेश बड़ा साफ और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस का नाम लेने वाला आदमी नहीं होगा। ये आपको बताऊं, इस तरह की स्थिति है। सारे कामकाज, यहाँ के विकास कार्य सारे वो तो बंद पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद और भी चीजें ऐसी है। झूठी गारंटियां देकर के सत्ता में आई, अभी वो गारंटियां धरी की धरी पड़ी। इन सारी बातों का जवाब देने का वक्त आ गया है।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की शिमला इकाई ने आज शिमला में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सीबीआई के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सीबीआई की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले से केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज के सभी लोग प्रभावित होते हैं। राजेश चहल ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में आम लोगों की भूमिका को अहम बताया और सभी से रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना तुरंत विभाग को देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि छोटी रकम के लेन देन पर भी सीबीआई मामला दर्ज करेगी और सीबीआई के पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। राजेश चहल ने लोगों से अपील की कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी दबाव में डालकर रिश्वत की मांग करे तो तुरंत उसकी शिकायत करें। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज से 2 दिवसीय शिक्षा व करियर मार्गदर्शन मेला शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों व अभिभावकों को उच्च शिक्षा, करियर विकल्पों और विभिन्न व्यावसायिक कोर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह के एजुकेशन एक्सपो बच्चों के लिए मददगार साबित होते हैं और उन्हें बेहतर करियर चुनने का मार्गदर्शन मिलता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने हाल ही में घोषित हुए 10वीं व जमा 2 कक्षा के परिणामों में 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 150 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ई फार्मेसी के विरोध में दवा विक्रेताओं के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान का आज प्रदेश में भी असर देखने को मिला। सोलन जिले की लगभग 1500 दवा दुकानें आज पूरी तरह बंद रही। दवा व्यापारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा की खरीद पर रोक लगाने की मांग की है। सोलन जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव विपुल शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन दवा खरीद से दवा व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है और लोगों को नकली दवाएं ही मिल रही हैं।
4: हमारे इस बंद में सभी प्रकार की दवाई की दुकानें, सभी प्रकार की होलसेल की एजेंसियां सभी आज पूर्ण रूप से बंद है। हमारी स्ट्राइक 19 तारीख रात 12 बजे से 20 तारीख रात 12 बजे तक जारी रहेगी। ई फार्मेसी जो है वो ऑनलाइन दवाइयों का जो व्यापार है उसके विरोध में हमने काफी टाइम से सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी, मगर वो कोई अभी तक संज्ञान नहीं निकला। और दूसरा हमारा है जो हमारी स्पूरियस मेडिसिन भी ऑनलाइन फार्मेसी से आती है, नकली दवाएं जो ऑनलाइन में मिलती है उसका भी विरोध हम करते हैं।
0: शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर अलग अलग राज्यों से मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस मुख्यालय शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान ने आज शिमला में बताया कि उत्तर प्रदेश और पंजाब से दो मुख्य चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 जून से होगा शुरू। पहली से 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है जानकारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से देश की एकता व अखंडता को मिल रही मजबूती। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में हिमाचल को देश भर में 6ठा स्थान मिलने पर जताई प्रसन्नता। अध्यापकों व कर्मचारियों को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हर मोर्चे में विफल रहने का लगाया आरोप। कहा, अभी तक एक भी गारंटी नहीं हुई पूरी। और दवा विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। सोलन सहित अन्य जिलों में दवा दुकानें बंद रहने से मरीज परेशान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और समाचारों के बाद एक बार फिर से हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। लेकिन कार्यक्रम का समय भी अब समाप्ति की ओर है, तो ज़्यादा बातचीत तो हम नहीं कर पाएंगे श्रोताओं। लेकिन आज हमने फिर भी आपके साथ बहुत सारी बातें की और जो सोच कर आते हैं वो आपके साथ हम कह देते हैं कार्यक्रम में। अब चलते चलते सुनवाएंगे आपको आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत। अनामिका फिल्म से ये गीत है और आवाज़ है किशोर कुमार की। तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए जाने की अनुमति। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जय हिंद।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn Learning जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: फिर क्यों बेटा?
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, पर फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे, नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। You can keep this book. और मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर, इसे खत्म करने के लिए।
12: Sure.
13: Sure.
14: चलो बेबी चाय।
15: Thank you.
14: आपने आज की न्यूज सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: Oh no.
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है? अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है, और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया
2: बिरजू बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज
3: तो क्या लॉकेट,
0: उससे भी बड़ी
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, फुहार लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार ना पड़े इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का विधान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोल कर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहा तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए बीए एमए की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ ली। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। You can keep this book, but मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर, इसे खत्म करने के लिए।
12: Sure.
14: चलो बेबी चाय।
15: Thank you.
14: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
16: Oh no.
15: अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
14: पता,
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
17: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 70 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं Apex+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977। नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: सफर कैसा रहा अम्मा?
1: बहुत बढ़िया।
2: फिर जो बेटा,
1: बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे?
0: मिली तो है।
1: पापो, छुट्टी के लिए कुछ जेवर वेवर लाए कि नहीं?
0: लाए हैं।
3: सोने के बूंदे, अंगूठी लाए हैं,
0: उससे बड़ी चीज।
3: तो क्या लॉकेट?
0: उससे भी बड़ी।
1: तो सोने का पहाड़ ले आया क्या?
0: अरे पहाड़ नहीं अम्मा, पुआर लाए हैं, वो भी स्वच्छ पानी की। अब गंदे पानी से बीमार न पड़े, इसकी जिम्मेदारी बाप की तो है।
3: ये तो सोने से भी अनमोल है।
4: देश उम्मीद से है, करो कोशिश।
5: पिता हो तो बिरजू जैसा, जो जानते हैं कि शुद्ध पीने का पानी और घर की स्वच्छता दोनों जरूरी है बच्चे की अच्छी सेहत के लिए।
6: संतुलित और पोषक भोजन जरूरी है, विशेष रूप से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए। यही हमारे समाज के भविष्य की नींव।
5: पोषण के पांच आधार, स्वच्छ हो घर संसार, आहार हो खूब अच्छा, रहे 10 से दूर बच्चा, खून में कमी ना हो, 1000 दिन पोषण दो। पिता होने की सच्ची पहचान, पालन के साथ पोषण का भी ध्यान।
7: आपको पता है इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती हैं अगर मैं एक बार सफल हो गया तो।
8: भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से।
9: नमस्ते, मैं हूँ प्रगति।
10: और मैं हूँ विकास।
9: हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए।
10: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार।
9: मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार।
8: जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा, और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
12: एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे।
13: दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
12: कहाँ, तुझसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: क्या हुआ?
13: प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर, आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर।
12: काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ।
13: स्कूल छूट गया मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर, मैंने रद्दी पकड़ी। रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, और इलेक्ट्रिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर।
12: क्या आदमी हो, मजा आ गया सच में। यू कैन कीप दिस बुक, पर मुझे 2 दिन में वापस चाहिए।
13: 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए।
12: श्योर
13: श्योर।
14: हेलो बेबी चाय।
15: थैंक यू।
14: आपने आज की न्यूज़ सुनी?
15: नहीं, क्यों, क्या हुआ?
14: एक लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उसे देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है।
15: ओह नो। अरे यार, लोगों को आजकल हो क्या गया है?
14: पता,
15: अजीब अजीब चीजें करते हैं यार। मतलब इसके लिए मरने की क्या जरूरत थी, शादी करके देख लेता
14: और क्या।
16: मरना तेरे को डर नहीं लगता?

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

सा कोई दूसरा इस समीपे हुआ तो रब से शिकायत होगी।

0: सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या

See you.

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।